0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बुधवार 16 सितंबर रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का स्वागत हम करते हैं। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का।
2: टाइम चेक, सुबह के 6 बज रहे हैं। 16 सितंबर वेंसडे का दिन, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। दिसंबर 2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 450 मामलों की कार्रवाई चलाई। इनमें से वर्तमान में 104 मामले अदालत के समक्ष हैं, जबकि 1800 मामलों की जांच अभी भी जारी है। कुछ मौजूदा संवेदनशील मामलों के चलते एफसीसी के जांचकर्ता और निदेशक कुछ समय से सुर्खियों में हैं। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान एफसीसी के निदेशक संजय दाऊदारी ने बताया कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले मार्च महीने में उन्हें एक लिफाफा मिला था जिसमें 2 गोलियां थी और धमकियों से भरा एक पत्र था। ऐसी स्थिति जांचकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।

0: पेंटागन की नई रिपोर्ट शागोस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती है लेकिन ये जेगो गोसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती हैं। दस्तावेज में खास उल्लेख है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में। मॉरिशस जहां यूके और मॉरिशस के बीच शागोस समझौते को लागू करने पर काम किया जा रहा है, वहीं ये नई स्थिति जेगो गोसिया मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ओमान मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ जिसके बाद दो नाविक लापता बताए जा रहे हैं जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि पनामा झंडे वाला ये जहाज एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वो नवल माइन से टकरा गया था जिससे उसमें आग लग गई। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो कल गुरुवार 17 सितंबर सुबह 10 बजे तक के लिए बरकरार रखी जाएगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज दिन के दौरान खासकर देश के दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं, रह रहकर हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye RM3 hai Parveeza ka saath hai. Urdu tashriyat baname sab al khair lekar आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़े सामीन, ये वो लम्हात है जब दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताज़गी नसीब होती है। तो आइए मज़े सामीन इससे रूह परवर महफिल का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादा को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने हुक्म दिया कि सब कामिल फन जादूगरों को हमारे पास ले आओ।

चुनाचे जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो तुमको डालना हो डालो। फिर जब उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो मूसा ने कहा कि जो चीजें तुम बनाकर लाए हो जादू है, अल्लाह इसको अभी नीस्त नाबूद कर देगा। अल्लाह शरीरों के काम संवारा नहीं करता और अल्लाह अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा, अगरचे गुनाहगार बुरा ही माने।

तो मूसा पर कोई ईमान न लाया मगर उसकी कौम में से चंद लड़के और वो भी फिरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में ना फंसा दे। और फिरौन मुल्क में मुतकब्बिर था और किब्र कुफ्र में हद से बढ़ा हुआ था।

और मूसा ने कहा कि भाइयों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फरमा बरदार हो तो उसी पर भरोसा रखो। बस वो बोले कि हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में न डाल और अपनी रहमत से हमें कौमे कुफार से नजात बख्श।

और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही भेजी कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें ठहराओ और नमाज कायम करते रहो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो।

0: और मूसा ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में बारौनक साजो सामान और मालो जर दे रखा है। ऐ परवरदिगार, क्या इसीलिए कि वो तेरे रास्ते से गुमराह कर दें? ऐ परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक अजाब अलीम न देख लें। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते पर न चलना।
1: वज

और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार करवाया तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और ज्यादती करते हुए उनका ताकुब किया, यहाँ तक कि जब उसको गर्क करने वाले अजाब ने आ पकड़ा तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि जिस अल्लाह पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फर्मा बरदारों में हूँ। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा, तो आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं।

और हमने बने इसराइल को रहने को उम्दा जगह दी और खाने को पाकीजा चीजें अता की, फिर भी वो बावजूद इल्म होने के इख्तिलाफ करते रहे। बेशक जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते रहे, तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उनमें उन बातों का फैसला कर देगा।

अब अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाजिल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना और न उन लोगों में होना जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करते हैं, नहीं तो नुकसान उठाओगे।

जिन लोगों के बारे में अल्लाह का हुक्म अजाब करार पा चुका है वो ईमान नहीं लाने के जब तक के अजाब अलीम न देख लें खा उनके पास हर तरह की निशानी आ जाए। सो कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता। हाँ यूनुस की कौम के जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फवायदे दुनियावी से उनको बहरामंद रखा।

और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान लाए, और जो लोग बेअक्ल हैं उन पर वो कुफ्र जिल्लत की नजासत डालता है।

इन कुफार से कहो कि देखो तो आसमानों और जमीन में क्या क्या कुछ है, और जो लोग ईमान नहीं रखते निशानियां और डराने वाले उनके कुछ काम नहीं आते। सो जैसे बुरे दिन इनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं, इसी तरह के दिनों के ये मुंतजिर हैं। कह दो कि तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को नजात देते रहे हैं, उसी तरह हमारा जिम्मा है कि मुसलमानों को भी नजात दें।

ऐ पैगंबर कह दो कि लोगों अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन रखो कि जिन लोगों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, लेकिन मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है और मुझको यही हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हो जाऊं। और ये कि ऐ नबी सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुशरिकों में हरगिज ना होना, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज को न पुकारना जो न तुम्हारा कुछ भला कर सके और न कुछ बिगाड़ सके। अब अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे।

और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

0: कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ, और ऐ पैगंबर, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है उसकी पैरवी किए जाओ और तकलीफों पर सब्र करो, यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला।
1: सदकल्लाहुल अजीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कुरान पाक की तिलावत समात फरमाई। मजीद सामीन, कोई शाफी कयामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक कुरान से अफजल शान और मंजिलत वाला नहीं होगा। ना कोई नबी कुरान से अफजल होगा, ना कोई फरिश्ता। अल्लाह ताला हम सब को उन आयात मुबारका को समझने और अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों का नूर, हमारी कब्रों की वहशत और तन्हाई में सुकून और तसल्ली देने वाला, हमारी ज़िंदगी का रहनुमा और हमारे लिए रोज़ क़यामत शफ़ात करने वाला बना। आमीन। अल्लाह वो ज़ात है जो खालिक कायनात हैं, सब जहानों का पालने वाला है, वही राज़िक है, वही नाफ़े हैं, वही शाफ़ी इंसान की हर सांस, हर लम्हे और हर ज़रूरत उसके हुक्म से पूरी होती है।

रहमत तेरी जब बरसती है हर जान तेरे शुक्र मैं हस्ती है तू ही रहीम तू ही करीम तू ही का इसमें अजीम मजी सामीन औलिया कराम अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे होते हैं इनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल की याद में गुजरती है मजी सामीन हमें भी इसी तरह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अल्लाह पाक अपने इन नेक बंदों औलिया कराम पर अपनी रहमतों की बरसात फरमाता रहता है।

महबूब तेरी तरह कोई पैदा ही नहीं हुआ, सारे जहां का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सर पर सचता है। हमने जान लिया, हमने मान लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दोनों जहानों के बादशाह हैं। शहनशाह बगदाद, पीरों के पीर, पीरान पीर, गौसे आज़म दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, मुहीद्दीन सैदीना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैह का महीना आप तमाम अहले इस्लाम को मुबारक।

होती है और रिज्क, रिज्के हलाल, हलाल रोजी नसीब होती है। तो उसे फिर दुनिया में कोई परेशानी नहीं है ना आखिरत में कोई परेशानी है, इसलिए कि इन पांच बातों में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। इनमें से एक एक बात में इतनी गहराई है और एक एक बात इतनी जामे है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ज़माना चाहिए। इसलिए इब्तिदा में अपने आपको यह हदीस सुनाई कि हुजूर को जामे दुआएं बहुत पसंद हैं और आपकी हर दुआ ऐसी जामे है, जामे का मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां सिमट जाती हैं। वैसे तो हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कलमा ही कलमे जामिया है, लेकिन आपकी दुआओं की मुजज़ाना शान है, आपके दुआओं के भी कई मुजज़ात हैं जो हर ज़माने में रूनुमा होते हैं। ये एक अलग मौजू है, अगर कभी मौका मिला तो या इन दुरूस में आगे चल के अगर मौका हुआ तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआओं की मौजज़ाना शान क्या है। और ये चार बातें इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई आदमी मुसलमान होता तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये चार बातें सिखाते हैं। अभी वो इस्लाम में दाखिल हुआ, मुसलमान हुआ और हुजूर ने वहाँ उनको इन बातों की तालीम दी। ये असल में पांच सबक होते उसके लिए जो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होते हैं। इसमें बख्शिश का सबक है, रहमत का है, हिदायत का है, आफियत का है, रिज़्क़ और रोज़ी का है। चुनाचे सही मुस्लिम में है, अन तारिक़ बिन अशयम, तारिक बिन अशयम या रावी है रदी अल्लाह, काला कान रजुलो इज़ा असलमा, कि जब कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता तो अल्लमहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सला, हुज़ूर सलाम उसको नमाज सिखाते, सुम्मा अमरहु अन यदउवा बिहाज़िहिल कलिमात, फिर इन कलिमात के साथ दुआ मांगने का हुक्म फरमाते हैं कि जब वो दुआ मांगे तो इन कलिमात से दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम फरमा, मेहरबान हो जा, मेरी रहनुमाई फरमा, मेरी हिफाजत फरमा और मुझे हलाल रोज़ी दे दे। ये है वो पांच असबाक जो हुजूर सलाम, बिल्कुल जब इंसान मुसलमान हो जाता तो उसको सिखाते थे और ये हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें इस दुआ को याद करें, अगर याद ना हो तो इसके

0: तर्जमे को याद करें, तर्जुमा भी याद ना हो तो पांच बातें: बख्शिश, रहमत, हिदायत, आफियत, रिज्क। यूं करके दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमारे हर मुश्किल को आसान फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग।
1: हमें ये शर्फ हासिल हुआ है कि जामा मस्जिद के खतीब आला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी साहब ने हमें अपने बयान से फैसयाब किया है। शहनशाह बगदाद गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैहि बेइंतहा मुश्किल कुशां और हाजत रवा थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाही अलैहि की शान व अज़मत बहुत बड़ी है। आप रहमतुल्लाही अलैहि अपने चाहने वालों की मुश्किल खुशाई फरमाते हैं। कोई हाजत तलब करे तो उसकी हाजत रवाई फरमाते हैं। कोई मदद के लिए पुकारे और सच्चे दिल से फरियाद करे तो उसकी दात रसी भी फरमाते हैं।

सामिन मोहतरम, आज की उर्दू महफिल मंसूब थी इस्लाम के अजीम वाली और सरखिले मशाइख हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र खैर से। मजीद सामिन, बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ इल्म देते बल्कि दिलों की इस्लाह और किरदार साजी पर जोर देते। तलबा और उलमाए कराम की तरबियत में आपका शुमार नुमाया है। वज़ीज़ामीन, अमल के बग़ैर इल्म बेअसर है और इखलास के बग़ैर अमल बेजान है। मोमिन का मयार उसकी आजजी और सब्र है। आप लोगों को तौबा, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ बुलाते थे। आपने हमारा प्रोग्राम सुना, अल्लाह अज़्ज़वजल आपको खुश रखे और हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 94.95
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Jani Seyarangam.

આવો અમારી સાથે दस वागी ने 33 मिनिट एंड आशा करिए कि आज ना सिलेक्शन तमने गमी रहा हशे। भाई ठंडी ठंडी हवाओं चाली रही है, तमने एम थशे कि अमे वात केम नथी करी रहा। ना भाई ना, वात पण करी रहा।

0: चाले रंगीली वे वण में
1: बस आसा थे राजनुआ कार्यक्रम ही समाप्त थवा आवे इट्स ऑलरेडी 10:41 बस आशा करिए कि तमने गम्यो हशे आजनुआ कार्यक्रम अने फरी मळीशु जल्दी टिल देन तमे बस पोतानु ध्यान राखो अने अमारो साथ आमने आम देता रहो फरी मळीशु काले सवारे 10 अहियां ज रेडियो मनोरंजन ना लहर उपर सो टिल देन हसता रहो मुस्कुराता रहो रहो हरकता अने मलकता एन्जॉय करता रहिए वैनिला आइसक्रीम ना छल्ला गीत ने अने आ साथ ज रत्ना ने आपो अनुमति नमस्कार शुभ दिवस सबने।

नमस्कार प्यारे श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो प्रस्तुत है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम और मैं उषा कौर आपके साथ। जी हाँ, सारी 11 बजे तक। कहते हैं जिस दिन की शुरुआत भगवान के नाम से हो उस दिन हर पल में एक अलग ही सुकून होता है। तो चलिए मन को भक्ति के रंग में रंगते हैं, दिल में श्रद्धा जगाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र।

कहा जाता है कि जहाँ गणेश जी का स्मरण होता है वहाँ शुभता का वास होता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा और उनके नाम के स्मरण से करते हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करने वाले और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं।

0: श्रोताओं, कहते हैं मनुष्य को प्रकृति की सबसे अनमोल रचना माना जाता है। उसे बुद्धि मिली है, सोचने की शक्ति मिली है और सही और गलत में अंतर करने की समझ मिली है। लेकिन मनुष्य की असली पहचान केवल उसकी बुद्धि से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और उसके संस्कारों से होती है।
1: मीराज राम, मीरा के राम, अ कंपाइलेशन ऑफ मीराज सॉन्ग्स टू राम। Voice Melody, Kavita Krishnamurti. Research and Music Direction, Shambhu Sen. Commentary Voice, Harish Bimani.

श्रोताओं कहते हैं अहंकार इंसान को अपनी शक्ति धन या सफलता पर घमन करना सिखाता है। अहंकार के कारण इंसान दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है और धीरे धीरे अपनों से दूर हो जाते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सफलता हमें विनम्र बनाए, अहंकारी नहीं, क्योंकि अहंकार इंसान को नीचा करता है जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है।

तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस भक्ति गीत के साथ हम अपने कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। याद रखिए, जीवन में विनम्रता ही सच्ची पहचान है। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

जी म्यूजिक के साथ कुछ ऐसा ही जो हमेशा वही ताकत लेकर आता है, वही वाइब्रेशन और वही जुनून। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और इन सब के लिए जो अभी मार्केट में है प्रॉब्ली, या घर पर है कुछ तैयारी कर रहे हैं और ये सोचें कि अकेले तो हम भी नहीं, क्योंकि जब गानों का साथ हो तो फिर लगता है कि हर दिन ऐसे ही ये बात हो। चलिए कुछ म्यूजिक है, कुछ गाने जो बिल्कुल सेट है यहाँ पर, और हम चाहें कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं और जितने भी गानों के बीच में आपको अपनी यादें याद आ रही हैं उनको बिल्कुल जगा के रखें। क्योंकि देखिए उस टाइम पर जब हम बात करते हैं सिनेमा जाने की, या फिर उस टाइम पर जब बाकी मोड ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था तो ये गाने ही थे, ये बॉलीवुड की मूवीज़ ये किरदार थे, लार्ज इन द लाइफ मूवीज, इनको देख कर बड़े हुए, डायलॉग सीखे और ये एंटरटेनमेंट का जो सीन है वो चालू हो गया। आरएम थ्री आपके साथ यूं ही जुड़े हैं 12 से 2 के बीच में, थोड़ी देर में परी आपका साथ दिवाने के लिए बिल्कुल सेट। और ऐसा करते हैं एक बार फिर से कुछ कहानी जोड़ते हैं आपके साथ, चलते हैं एक ट्रेन पर, ट्रेन यानी कि अलग अलग स्टेशन, और जुड़ेंगे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से, काम करते हुए, ब्रेक लेते हुए, खाना खाते हुए। चलिए ऐसी बात है तो फिर चलते हैं, लेकिन जब तक म्यूजिक ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। थोड़ा सा हारमोनियम छेड़ कर, थोड़ी सी धुन छेड़ कर हारमोनियम पर कुछ बजा दें।

क्राइम कमीशन में परिवर्तित करने में कई चरण और मकसद भी कई। इनमें से एक है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना। ऐसा करने के लिए अलग संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मॉरिशस के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोहा जयमंगल ने आज सुबह लमाचिनल कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त पारदर्शिता के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर भी जोर दिया। 2024 के दिसंबर महीने से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से 450 दस्तावेजों पर कार्य संपन्न किए गए। इन दिनों न्याय संस्थाओं के सामने 104 दस्तावेजें पेश की गई हैं, जबकि अभी भी करीब 1800 जांचों पर कार्य किए जा रहे हैं। कुछ नाजुक दस्तावेजें भी हैं जिनके चलते एससीसी के जांचकर्ताओं और इसके निदेशक को निशाना बनाया जा रहा है। आजसू द्वारा कल चलाए गए दो ऑपरेशंस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पैतृसाबल में छापे मारे गए, जिसके अंतर्गत 28 और 32 साल के 2 पुरुषों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उनके यहां से 625 पट्टियां जब्त की, जिन पर एक पदार्थ पाया गया जिसके सिंथेटिक कैनाबिनॉइड होने का शक भी किया जा रहा है। और कल ही पॉजिटिव फ्लैग पे बेबा के आजसू ने कार्रवाई चलाई। 28 वर्षीय नाइजेरियाई मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली में गांजा जब्त किए गए, जिसकी लागत 1,24,000 रुपये की बताई जाती है। उसे हिरासत में रखा गया है। बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस की नई रणनीति सामने आई। इस बार रूस ने अपने शक्तिशाली रणनीतिक बमवर्षक विमानों के जरिए यूरोपीय क्षेत्र में एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। रूस के रक्षा मंत्रालय से जुड़े रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी TU-95MS बमवर्षकों ने सागर में नॉर्वेजियन सागर के ऊपर करीब 5 घंटे तक लगातार गश्त की। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रूट रॉयल मिडलैंड्स में 76 साल के 76 years old की श्रीमती लक्ष्मी सिद्योयाल पैदाशी नाम जोगीसर, जो सांता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके रिश्तेदार श्री साहिल सिद्योयाल के घर रोथ रॉयल मिडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे आज 2 PM रूट रॉयल पेलगैंट सेबास्तेपुल में 62 साल के 62 years old के श्री झरीलाल रामसरन जो गिरीश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रामसरन के घर रूट रॉयल पेलगैंट सेबास्तेपुल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉम्बेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 PM रूट रॉयल कैथ्रसर में 62 साल के 62 years old के श्री हनराज परग जो बाबुन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर वो तैयार कथ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 PM टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक में 57 साल के 57 years old के श्री प्रेमानंद ऑर्नोट जो सूरज नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर टैगोर रोड रिश्मा फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 PM शुक मेरे बिन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना सुहाना सफर, 1:09 और ये सफर अभी भी जारी है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। अभी के लिए तो मैं आ गई हूँ परी आपका साथ निभाने, और उम्मीद करते हैं इन गानों को आप पसंद कर रहे हैं। रफ़ी साहब हो, किशोर कुमार हो, मुकेश साहब हो या फिर शैलेंद्र सिंह, इन सभी आवाज़ों को कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की, क्योंकि यही तो वो समय होता है जहां पर इन एवरग्रीन मेलोडीज़, इन पुराने तरानों को हम आप तक पहुंचा सकते हैं। और गाने भले ही पुराने हुए हों, लेकिन गाने ऐसे हैं जिन्हें हम आज भी सुनकर उतना ही अच्छा फील करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दैट इस सफ़र को आप भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। आपके लिए, आपका जो साथ है हमारे लिए,

0: आपका जो साथ है वो तो ऐसे ही बना रहेगा और आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5250-6200-5250-6200 आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस
1: RL3 Radio

0: खाना सफर।
1: तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1:26 हो गए हैं। मैं हूँ परी आपके साथ सुहाना सफर प्रोग्राम ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। सीता जी पोंदे लास्का से हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं कि आज मिष्टी गोईराम अपना जन्मदिन मना रही हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। ये है फ्रॉम पति नीजल, उनके बेटे हैं युवराज नक्ष, बेटी ज्ञाना, साथ में सभी बुधन गोईराम रामभजन लक्ष्मण परिवार अपनी शुभकामनाएं उन तक पहुँचा रहे हैं। तो आज मिष्टी अपना जन्मदिन मना रही है, साथ ही यहाँ पर ये जो अगला गाना है उन तमाम लोगों के नाम जो आज 16 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हमारी पूरी RM3 रेडियो मनोरंजन टीम आपको विश कर रही है अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: RM3 Radio.
1: और चलिए इस वक्त माला जी हमारा साथ दे रही हैं आपका ट्रिबोन से और गानों को आप सुन रही हैं रेडियो मनोरंजन पर आपका हम स्वागत करते हैं और हमेशा ही कोशिश रहती है कि इन गानों के साथ आपके दिल को हम लुभाते जाएं अभी के लिए आपका साथ मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है और सभी हमारे जो लिसनर्स हैं जो हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं हूं परी आपके साथ दोपहर के 2 बजे तक लेकर आए हैं आपके लिए ये प्रोग्राम जहां पर ये जो प्यारे गाने हैं वो आपकी दोपहर को सजा रहे हैं सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर रफ़ी साहब सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें ये गाना आप सभी के नाम

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और जी हाँ दोस्तों 157 और इसी गाने के साथ अब समय हो चला है कि मैं परी लूँ आपसे अलविदा. सुन पाएंगे प्रोग्राम धरोहर की सरोवर, ये होगा अरविंद के साथ 2 बजे के समाचारों के बाद. आपसे मुलाकात होगी जल्द आज 4 से लेकर 5 बजे तक दिल से मिले दिल प्रोग्राम में. तब तक के लिए हमारा साथ दीजिए ऑन रेडियो मनोरंजन. कुछ खूबसूरत प्रोग्राम आपके नाम और विश कर रहे हैं आपको वंडरफुल वेडनेसडे.

0: दोपहर के 2 बजे है। संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे रजनी नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के एक सत्र में भाग लेंगे। वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे, अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और एक साथ जीना। इस पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी इस सत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को नेशनल क्राइम कमीशन में परिवर्तित करने में कई चरण हैं और मकसद भी इनमें से एक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और भ्रष्ट

0: ऐसा करने के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है. ट्रांसपेरेंसी मॉरिशस के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोहा जयमंगल ने आज सुबह लमाचिनार कार्यक्रम के दौरान ये बात कही. इसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त पारदर्शिता के वास्ते जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर भी जोर दिया. आजसू द्वारा कल चलाए गए दो ऑपरेशंस में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. 35 हमले में मारे गए छापे के अंतर्गत 28 और 32 साल के 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उनके यहां से 625 पट्टियां जब्त की जिन पर एक पदार्थ पाया गया जिनके सिंथेटिक कैनाबिनोइड होने का शक किया जा रहा है. और पॉजिटिव फ्लैग में मेबा के आजसू ने एक कार्रवाई चलाई. 28 वर्षीय नाइजीरियाई मूल के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया. उसके पास से एक प्लास्टिक की थैली मिली जिनमें गांजा जब्त किया गया. इसकी कीमत 1,24,000 रुपए की बताई जाती है. उसे भी हिरासत में रखा गया. विदेश समाचारों में गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए लापता बताए जाते हैं. इनमें बच्चे भी शामिल. मलबों तले से शवों और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी है. अमेरिका के लॉस एंजेलिस के बाहरी इलाके में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई. प्राप्त जानकारियों के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता के अनुसार ये हेलीकॉप्टर चेथसाउथ इलाके में 2 कमर्शियल बिल्डिंग के बीच गिरा. एक व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए. आपने ध्यान दिया, धन्यवाद. कुछ ही समय में शोक समाचार. रोथ्रॉयल मिडलैंड्स में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी सिद्योयाल पैदाशी नाम जोगीसर जो सांता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे अभी से ही उनके पोते श्री साहिल सिद्योयाल के घर रोथ्रॉयल मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 PM. रोथ्रॉयल पिलरिन सेबास्टोपोल में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री झरीलाल रामसरन जो गिरीश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रामसरन के घर रोथ्रॉयल पिलरिन सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM. रोथ्रॉयल 4 सौ में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री हनराज पारग जो बाबुन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर रोथ्रॉयल 4 सौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टुडे एट 2:30 PM. टैगोर रोड रिशमा फ्लैक में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमानंद ओरनोत जो सूरज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर टैगोर रोड रिशमा फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio. Radio.
3: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे

0: आप हमने साथ जुड़ल हुआ, हम संगे जुड़ल हुआ एक कार्यक्रम महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग और MBC के मिलल जुलल सहयोग से तैयार करल जात बा। तो जाने ला कार्यक्रम में हमने भोजपुरी के बारे में भोजपुरी में चर्चा करी ले जा और अलग अलग चीज आनी ले जा। जैसे आज ढेर कोई खास तौर पर जो लोग भोजपुरी इतना नहीं समझे लन जा वो लोग के गिनती सिखाब जा। भोजपुरी में गिनती तनिक अलग रहेला जन्मे करेला, साथ साथ में एक दुगो बुझावल एक दुगो कहावत इत अनबे करब जा। एगो कहानी भी सुनबा साथ में हमनी तो लोग के एगो एगो ऐसा एगो पारंपरिक नृत्य पारंपरिक गीत के बारे में बताब जा जो भारत में काफी लोकप्रिय है एकरा झिझिया बोले लग जा। तो एकर पर भी चर्चा करब जा। साथ साथ में जैसे जाने ला हमनी ई कार्यक्रम में आने ले जा मॉरिशसी लेखक लोग के लिखल भोजपुरी के बारे में। तो आज हमनी सरिता बुदु जी के पुस्तक जो है भोजपुरी बोला ओकर में से एक दो सामग्री तो लोग के सामने रखब जा। साथ साथ में एगो ऐसा चीज आनब जा जो तनकुन अलग रही कौन ची है एगो दुगो शब्द भोजपुरी में ओकर अर्थ को ची है और ओकर संदर्भ कैसे है श्रीमती जिंगन जी के पुस्तक में हमनी ले लह जा। तो ई सब आज तैयार कर जा। तो चला इस कार्यक्रम के शुरुआत में एगो गीत सुनब जा फिर कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा।
1: सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर। तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
2: धरोहर के सरोवर, धरोहर के सरोवर
3: RM3 रेडियो।

नमस्ते। धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत करत है जा। हम अरविंद और कार्यक्रम के तैयार करे में हमने के सहयोगी संजू तो कोई भी है जा परिहवन।

तो जोन गीत सुन लय एगो विदेशिया गीत है। भोजपुरी लोक संस्कृति में, भोजपुरी परंपरा में एक बहुत महत्व रहेला, अलग अलग रूप के विदेशिया गीत रहेला। तो लोग के शुरुआत में बोले रहनी आज हमनी भोजपुरी में जो गिनती है ओकर पर तन को ध्यान देव जा। आप में से ढेर कोई एक बारे में जानो थे बजा, पर उद्देश्य ई बा कि जो लोग नहीं जानेला वो लोग जाने की भोजपुरी में गिनती कैसे अलग रहेला। तो जैसे वन, अंग्रेजी में वन, हिंदी में तो एक बोला जा, भोजपुरी में ओकरा एगो एगो, फिर आवेला दुगो, दुगो माने दो, दु, तीन गो, तीन जैसे बोले जा थ्री, वो तीन गो, फिर चार के बोलब जा चार गो, फाइव के पांच गो, सिक्स के बोलब जा छौ गो, सात, सेवन जिसे अंग्रेजी में सेवन, हिंदी में सात, भोजपुरी में बोलब जा सात गो, इसने आठ के बोलब जा आठ गो, नौ गो नाइन, और वो दस के दस गो। तो देखबा कि भोजपुरी में जो नंबर है हिंदी में ओकर में गो जोड़ देवे लंजा, और बाद में जब दस के बाद जब आए तो इसने ग्यारह गो, बारह गो, तेरह गो, चौदह गो, पंद्रह गो, सोलह गो ऐसे जाला। पर जब बीस में आवेला ट्वेंटी तो हो जा परी ढेर कोई बोले जा बीस गो, बीस गो चौधारी में बीस जना लोन जा, पर भोजपुरी में एक कोरी बोली ले जा, एक कोरी, बीस के एक कोरी। हई हमी के भाई संजुआ के देख के हंसता है, जब बीस के बात होला तो शादी में खला शादी हो गल, तब ससुर पूछलक दुल्हा से कि चौथारी में कई जनाई बजा, तो वो बोलन बीस बीस, हाँ बीस। तो ससुर बोलक अच्छा बा बीस जनाइय जा, तो निमन से की प्रबंध हुई, कबाल बन जा बीस भरल चलाल बा, तब बोले रहल बीस, तब बीस में ऐलन जा, चल आगे चल जा। तो बीस के मिले जा एक कोरी, अब तीस के, एकर से पहले जब मान लो इक्कीस के बोलब जा एक कोरी एक, एक कोरी दो, एक कोरी तीन, इसने जाला। तो जब वो तीस लगे आवेला थॉट थर्टी, तो ओकरा बोले जा एक कोरी दस, एक कोरी दस माने एक कोरी बीस, ओकर में दस जोड़वा तो एक कोरी दस। अब जब चालीस में आवत जा फोर्टी, तो फोर्टी जनरे करेला चालीस, ओकर में दू गो बीस है, तो वो हो जाला दू कोरी। इसने पचास के बोलब जा दू कोरी दस, साठ सिक्सटी, ओकरा बोलब जा तीन कोरी, फिर सत्तर सेवेंटी के बोलब जा तीन कोरी दस, अस्सी कतोवें ओकरा बोलब जा चार कोरी, फिर नाइन्टी नब्बे के बोलब जा चार कोरी दस, और सौ के सौ तब बोलबे करी ले जा। एक दूगो उदाहरण दे ले जा, जिसे बोलब जा आई हैव थ्री चिल्ड्रन, तो बोलब जा हमार तीन गो लैका बा, ही हैज टू डॉटर्स, बोलब जा ओकर दू गो बेटी या फिर दू गो छोकरी बा। एक भाई बा के प्रयोग भोजपुरी में, यू हैव वन सन, तोहर एगो बेटा या फिर एगो छोकरा बा। इसने बोलब जा दे हैव फोर हाउसेस, तो बोलब जा उ लोग के चार गो घर बा। तो एकर में काफी चीज सीखे के मिलेला।

अब जैसे साल भी साल के अंत तो हुआ बा तो भोजपुरी में लग जा ई बरिस पूरा हुआ बा ई बरिस हिंदी में बिरा जा वर्ष भोजपुरी में ई बरिस और उस दिन की तो दिन बोलबे कर जा सप्ताह के वीक सप्ताह के बोला जा सेमेन ई भोजपुरी शब्द ई क्रियोली शब्द सेमेन एकरा भोजपुरी ले ले बा ला सेमेन जिसे फ्रेंच में बोले जा या फिर सप्ताह भी सकब जा बोले मंथ के महीना आवर घंटा एज एज जिसे बोला जा ओकर उम्र तो भोजपुरी में बोला जा ओकर उमिर तो जिसे बोला जा दिस ईयर ई बरिस नेक्स्ट ईयर अब्री बरिस अब्री जुन आय होला बा और लास्ट ईयर ओकरा बोला जा गल बरिस तई थोड़ा गिनती आज सिखला जा इकर पर थोड़ो के और जानकारी दे और जा आगे चल के कि कैसे सब बजा आप भी प्रयोग करें मान लो जब 20 या फिर 40 बोले के बाद तो अपन दिमाग बदल जाए 20 के बोला जा एक कोरी 40 के बोला दू कोरी तो ये अभ्यास कर बता आप भी सब बजाने और आप लोग अपन लड़का लोग के भी सिखाइए जा ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में जैसे कंफ्यूजन हो वो लोग अतिरिक्त सीखियन जाता अच्छा है जितना जाने रन जाओ कर जस्ती सीखियन जाता तो लोग के नुकसान नहीं हुई अच्छा रही वो लोग खातिर ठीक बा तो चला अभी कार्यक्रम के आगे बढ़ा दो गीत सुनब जा फिर एक बाद में और बहुत ही रोचक चीज लेके आवत है जा

धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।

तो चर्चा करब जा ई पुस्तक के बारे में हमनी के पूर्वज के बोली ई योगेश्वरी झिंगन जी लिखले हुआ न झिंगन जी हमनी के जो भोजपुरी पैनल रहल करिकुलम डेवलपमेंट पैनल ओकर में रहलन हिंदी पढ़ावत लन फिर अभी अवकाश प्राप्त कर ले हवन पर अवकाश प्राप्त करला के बाद भोजपुरी के साथ नहीं छोड़लन ई खातिर ई जोन पुस्तक लिखले हवन एकर में बहुत कुछ बा खास तौर पर एकर में भोजपुरी के ढेर शब्द के बारे में बोल ले हवन साथ साथ में उस शब्द से जुड़ल कोनो चीज लिखले हवन त एकर में एगो शब्द एक दुगो शब्द हम लेल है सबसे पहले हंसुआ हंसुआ शब्द जानेला हमनी के पुरानिया लोग के समय में हंसुआ के बहुत मोल रहल जैसे अभी ले हंसुआ के प्रयोग करी ले जा कंगाली के जीवन जियत रहलन जा पेट खातिर परतल बहुत मेहनत करे की उस समय में गांव के सभी औरत के कंधा में हंसुआ रहे हंसुए से उ लोग काम करत रहन जा पैसा कमावत रहन जा और रात बिरात के जब निकलत रहन जा जैसे गीत गवाए में जाए के या फिर कोनो मर्दी में ऊ में तो लोग के हंसुआ अपन संगे लिवत रहन जा मान लो अपन अपन सुरक्षा संगे तो हिया तक कि हमनी के जो अपन देश के गो कहावत बन गल रहल अपन हंसुआ अपने देने खींची ना तो ये गो कहावत है कि अपन हंसुआ अपने देने खींची ना एकर पीछे को चीज लिखले हुआ एगो छोटा सुन कथा कि लैकवा के का होलगे मार के ओकर कपार फोड़ देलन सर चाची हम अपन लैकवन के लेके मुल्ला देने घास काटत रहनी कहानी कौन कौन लैका लोग टूटल का मुलवा में खेलत रहलन सर हल्ला गुल्ला करत रहलन सर रोरा चलावत रहलन जा वो लोग डरावत हलन जा हमार छोटका के एगो रोस एगो पत्थर लग गल ओकर कपार फूट गल घास होजे छोर छार के एक लेके डिस्पेंसरी गैनी डिस्पेंसरी शब्द एक बार डिस्पेंसरी ई भोजपुरी शब्द में ले बोल गल बा होने से ऐनी त बोलन स कि रोस चलावत रहल के रोस चले ले रहल त उही ओके लेके गैनी ओकर मां के बोले किसी बोला था ओरहन दे कि तुहर बेटा ई कर लग ओ कर लग तो उता सुनते लगल लगल बरबराई फरफराई सब कोई हमरे लेका के बोलेला हमर बेटा तो घरे बा पसर पसर करे लगल बस हम चुपचाप चलेनी छोड़ दे ओकर बेटा डिंगर बा डिंगर ई एगो खूबसूरत शब्द है डिंगर माने जो ढेर इधर उधर ढीट करेला जो चीज नहीं जाना करे के वो करेला डिंगर लेगा तहजा पर वो कहावत के प्रयोग करल गलबा अपन हंसुआ अपने देने खींची ना हम एगो हंसुआ के बारे में संजू हम के बोली एगो हंसुआ के बारे में कहानी सुनाई ले जा कि जब नहीं सुनाई ले जा तो एगो सुंदर कहानी हम गरनी पोस्ट डिफ्लाक गांव हमने के विभाग देने से हम जरा जा भेंट वार्ता करे तो एगो दादी रहलन उनकर से पूछती तोहर जीवन कैसे गल एगो एगो कहानी सुने कहानी नहीं बल्कि एगो घटना जो उनकर जीवन में घटित हो रहल तो बोलन जब शादी करके आयल तो छोटा रहल

0: लन अपन घर में उनकर पिताजी उनका निमन से दिखत लन काम काज करके नहीं दुवत लन जाओकरा तो जब हैजा शादी करके आयल तो हैजा पर ही उनकर जो सास है सास बोलन उनकरा जाके लाकुजिन में से हंसवाने के लाकुजिन देखा ई रसोई घर भोजपुरी में लाकुजिन बोले लगा तई बेचारी जब गल खोजे नवा नवा ताल बा तो खोजत बा कहां बा हंसवा हंसवा कौन चीज है वो तो नहीं जानत रहा। अब काफी समय बीत गल तो सास खीस में आल कौन ची कर रही जा इधर उधर लगल बोले जांगर चोर तो के बोलनी को हंसवा आने के नहीं अनले तई कुछ नहीं सकल बोले हदस गल तो सास जाके कोना में लकड़ी में हंसवा ऐसे खोसर रहा इसे लेके बता ई हंसवा नहीं जाने ले तो इतने नहीं जाना तो हल तो इसने दिन बीतल तो लड़का लोग होल जब लड़का लोग होल तो घर में उतना जैसे कमाई कम उतना बस नहीं होता हल तो इनकरा भी परल जाके काम करेगी गल तब इसमें में काम करे तो साहिबा जोन बा सरदार जोन बा उन लोग के बुलक रिगोल पकड़े के रिगोल पकड़ के माने जहां एगो सीधा ऐसी सीमा रही तो हो जा देपाई हो पत्ता निकल जा गन्ना में से तो जब काम शुरू कर लग तब हंसवा निकल लग तो हंसवा देख के लगल रोई और हंसवा से अगर बोले कि हंसवा एगो समय रहल जब हम नहीं जाने थे तू कौन जी हवे ई खातिर हमार सास हमके डंटले रहल पर आज यही हंसवा से हमार लैका फैका लोग के तनकुन सुविधा मिली घर में तनकुन पैसा जस्ती मिली तो ई हंसवा के कहानी हम के सुनैले रहलन। एगो दूसर शब्द ई भी हम के एगो एगो परंपरा से जुड़ल है घर में जब मरनी होला तो अलग अलग विधि होला ना घर में तो एगो चाहना जाने के हम एगो धरोहर है कि कौन चीज चाहेला करे के कौन विधि है तो इस पुस्तक में हमने के पूर्वज के बोली जो योगेश्वरी जिंगन जी लिखले हुवन एकर में इस शब्द के प्रयोग कले हुवन रुआ रुआ तो बोलत हुवन कि ई हमनी के पुरनिया लोग ई बात मानत रहलन जा कि जब कोई मर जाला तो कोई मर जाला ओकर माटी उठ जाए तो उही सांझ के ओकर नाम से रुआ निकालल जाला। बरका मां के मर्दी हो रहल तो फूफू ई सब विधि बतेले रहलन जिंगन जी के तो 6 बजे ले सब चीज बिना तेल के पका दे के बिना तेल के एगो पत्ता में सब चीज थोड़ा थोड़ा निकाल के एगो बर्तन में पानी लेके सब बेटा लोग के संगे जाके एगो बगल में एगो कोना में रख दे के और ये भी काफी रोचक है घूम के नहीं ताके के सीधे चलाए के और आके कुंवारी में कुंवारी माने दरवाजा में कुंवारी में ठोके के और भीतर महिला लोग हुवन जाना तो लोग पूछियन जा दुख छोड़ के अइला ता बोलिया सा दुख छोर अइला ता बोलिया सा हमनी घर के अंदर है सा दुख छोर अइनी सा सुख लेके आल है सा तब दरवाजा खुलेला तो ये गो एगो परंपरा है खासतौर पर जब मर्दी होला था उकर सांझ के तो हमने बहुत धन्यवाद दो अब जा योगेश्वरी जिंगन जी के उनकर पुस्तक हमने के पूर्वज के बोली इकर में से और कुछ समय समय पर तो लोग के सुनाब जा तभी के लिए योगीत सुनी जा
1: RM3 रेडियो

0: के सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर तो आवा भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे
1: धरोहर के सरोवर धरोहर के सरोवर
2: RM3 रेडियो रेडियो
3: देखा तो ये सब जो गीत है ये अलग अलग है ये लोक पारंपरिक गीत है ये भारत में जब पानी बरसेला जब फसल होला हर एगो गीत रहेला ऐसा नहीं कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा आपके याद दिला दिला जी अभी सुनत हुआ तो ये धरोहर के सरोवर कार्यक्रम आप सुनत हुआ हम अरविंद और साथ में हमने के सहयोग देवत हुआ संजू टकोरी अबरी पुस्तक जोन बा यहा भोजपुरी बोला स्पीक भोजपुरी ई डॉक्टर सरिता बुद्धू के पुस्तक है एकर में भोजपुरी के बारे में बहुत कुछ सीखे के मिलेला चाहे वो भोजपुरी संस्कृति के बारे में भोजपुरी भाषा के बारे में ओकर शब्द के बारे में बहुत कुछ ते एकर में हमने एगो शब्द देखनी जा एगो शब्द काफी सुनलो हुई बा हमके याद बा श्वेता बाबूलाल जी के वो गीत रहल ओकर में ई शब्द आ रहल तिरिया चरितर संजू भाई कब सुनलो वो ई शब्द तिरिया चरितर तो ई तिरिया चरितर शब्द

के बारे में डॉक्टर सरिता बुद्धू लिखले हुआ ने एगो भोजपुरी कहावत है और मॉरिशस में ढेर जो बुजुर्ग लोग है कर बारे में चर्चा करे रंजा तिरिया चरित्र तो ई शब्द श्रीमती गुणवंती चमन उनकर चाची जोन हुआ और राजवंती लोबिन दोनों काशी रहे लंजा पोटली तो श्रीमती लोबिन जी सरिता जी के बोले रहल कि इस शब्द उनकर दादी प्रयोग करत हलन और छोटा रहल त ओकर अर्थ नहीं जानत रहल त सरिता जी जब भारत गए रहलन त होजा परी 2009-2010 की बात करे थे जा त पंडित कुबेर मिश्रा के गांव गइलन बेड़कुंडा जोन आजमगढ़ में है त होजा परी उनकर से तिरिया चरित्र शब्द के बारे में पूछलन जो न पंडित कुबेर मिश्रा हुवन कैगो संस्कृत के बहुत विद्वान हुवन साथ साथ में भाषा वैज्ञानिक लिंग्विस्ट भी तो तुरंत इस शब्द के जो कहां से आल बाय कर बारे में बहुत उदाहरण दिलग उकर वाक्य में प्रयोग भी करके वो बोलन का हो तुहू तिरिया चरित्र पढ़त हुआ का हो एगो डबल मीनिंग चलावेला कर दूगो अर्थ चलावेला कि एगो ऐसा सोच एगो ऐसा विचार कि महिला लोग के जो दिमाग है ओकरा पढ़े नहीं सकबा एगो दूसर उदाहरण दिलक हम तोहर तिरिया चरित्र जननी ना कि तोहर जो धलत नहीं सकते समझे कौन चीज खोजत हो बोले के साथ में और को उदाहरण दिलक तिरियाचरित दैवो न जानस कि भगवान भी कबो नहीं जाने ला कि एगो महिला के दिमाग में उकर चरित्र में कौन सी बात मुश्किल है जाने के नहीं सब महिला लोग जितना सुनत हुआ तो उनके आदर सम्मान के साथ इधला एगो बहुत ही सुंदर शब्द अनले हुवन अच्छा कबू कि लोग नहीं जाने की तू को चीज सोचत हुआ ढेर अपन बारे में जानकारी नहीं चाहला देगी तब पंडित कुबेर मिश्रा उनकरा ई भी बोललक कि ई शब्द के जो ई वाक्य के ई दुगो शब्द जो बा तिरिया चरित्र एकर जो मूल है ई चाणक्य नीति में आलबा कोशिश करब जा संस्कृत तो उत्तर के नया हुईला पर कोशिश करब जा नृपस्य चितम कृपानस्य वितम मनोरतम दुर्जन मनवानाम स्त्री यश चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य कर अर्थ है कि जब वो राजा खुश रहला तो ई दिखेला कर संपत्ति में पर एगो महिला के दिमाग में कौन सी है वो कौन सी सोचत बा ई ढेर कोई नहीं सकेला जादे भगवान भी कबो नहीं सकेला जादे तो ई जो उनका ई जो बात है तिरिया चरित्र इस संस्कृत से स्त्रीयश्च चरित्रम स्त्रीयस्थ चरित्रम चाणक्य नीति में आलवा अब जब ये शब्द देख रहा तो याद हो आपके हम नी बोले रंजा कि ढेर को बोले रंजा कि भोजपुरी क्रियोली भाषा में तीन एगो पिजिन है एगो खिचड़ी दो तीन गो भाषा के खिचड़ी बनल तब भोजपुरी बनल नहीं भोजपुरी को पिजिन नहीं है एगो भाषा वैज्ञानिक शब्द है पिजिन माने इधर उधर के भाषा के मेल से एगो भाषा बन जाला एगो बोली बन जाला भोजपुरी के ओकर जो किसे बोले जाकर जर है वो बहुत ही आगे पहले संस्कृत में वैदिक काल में पाली प्राकृत हो जैसे आल बा ओकर में परिवर्तन होल बा पर ओकर मूल जो है हो जा परी है ये बतावेला भोजपुरी भाषा कितना
सशक्त।

0: बा औरू बाकी जो भाषा बा जैसे संस्कृत पाली प्राकृत लोग से जुड़ल बा तो ई रहल ई छोटा सुन बात जो हमनी भोजपुरी बोला स्पीक भोजपुरी पुस्तक में से निकलनी जा सरिता बुद्धू जी के बहुत धन्यवाद दुआजा कि ई पुस्तक में ई सब अनले होवन आगे चल के ई पुस्तक में कौन सी बा औरू तो लोग के बोलब जा चला संजू भाई एगो गीत सुनी रजा
1: सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे
2: धरोहर के सरोवर
3: और M3 रेडियो

0: RM3 Radio.
1: धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के आगे बढ़ावत है जा एगो प्रकार के गीत है झिझिया गीत या फिर झिझिया नाच नृत्य सुन लो वह हम भी नहीं सुने रहनी पर जब तनकुन शोध कार्य कर ले जा रिसर्च करी ले जा भोजपुरी पर ई झिझिया गीत के बारे में पता चलल ते ई दशहरा के दौरान ई गीत गावे लंजा और में नाचे लंजा बोला जला की जो बुरी शक्ति है हला जादू तो ना ई सब एकर से बचाव खातिर ई गावल जला और एगो पारंपरिक लोकगीत है ई गीत आमतौर पर झिझिया नृत्य के साथ होला और ई मिथिला जोन भारत में बिहार के भीरी जोन क्षेत्र है मिथिला और जो परी मिथिला एगो भाषा भोजपुरी भाषा हो जा रहेला ते मिथिला क्षेत्र में ई पारंपरिक लोक नृत्य रहेला एकर में विशेष रूप से एकर में धार्मिक भक्ति ते ई जो झिझिया गीत है देवी दुर्गा और गांव के देवता बरम बाबा सुन ले बरम बाबा के भक्ति और स्तुति पर केंद्रित रहेला और एकर उद्देश्य है सुरक्षा व्यक्ति के बचाव समाज के बचाव गांव के बचाव ते ई गीत के जादू टोना ई सब जो बुरी आत्मा बा लैका लोग के समाज के रक्षा होला कहे कि ई मानल जाला कि दशहरा के दौरान ई जो शक्ति रहला जस्ती सक्रिय रहेलन जा और एकर जो नृत्य है एकरो भी महत्व बा झिझिया नृत्य में महिला लोग अपन कपार के ऊपर यानी अपन सिर पर छिद्रों वाला एगो मिट्टी के घरा लेके नाचे लन जा और ओकर अंदर को चीहा एगो दीपक एगो एगो दीपक जो ने आग है जलता हुआ दीपक त ई गीत ई नृत्य संगे चलेला और जस्ती लय प्रदान करेला और एकर में परंपरा और एकता भी है ई गीत और नृत्य खाली धार्मिक रूप नहीं है बल्कि सामाजिक एकता के प्रतीक भी है जहां पर महिला लोग मिलकर एगो मजबूत बंधन बांधे लंजा तावा ई झिझिया गीत सुनी लंजा

0: RM3 Radio.
1: तो धरोहर के सर्वर कार्यक्रम के हजे पर ही पूरा कर थे जा हमने के सहयोगी संजू टुकुर के धन्यवाद दो अब जा साथ में जितना कोई ये कार्यक्रम के तैयार करे में हमने के सहायता कर लन जा अभी सप्ताह हमने को खास कार्यक्रम लेके आओ अब जा हमने के जो आप्रवासी दिवस जैसे बोले जा 2 नवंबर के ओकर पर आधारित एगो खास कार्यक्रम तो चल ये कार्यक्रम के समाप्त कर अब जा चचा जोगिया गीत से ये गीत हमने के दोस्त हमने के स्वर्गीय दोस्त पंकज मुहावीर गैले हुवन उनकर पिताजी ई गीत लिखले हुवन उनका प्रणाम करत हिजा तो ई गीत सुना हम क्या गया दा।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें रजनी से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। इन दिनों 273,000 से अधिक मॉरिशनों और रोड्रिक्स वासियों को बेसिक पेंशन प्राप्त हो रही है। इसी सप्ताह प्रकाशित समाज सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में अगस्त महीने के अंत में लाभार्थियों से संबंधित जानकारियां दी गई हैं।

इनमें से 5,300 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 90 वर्ष की आयु से कम है के हैं और इनमें 242 ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के हो चुके हैं। इस बुलेटिन में उन लाभार्थियों के नाम भी शामिल जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स और कई सोशल अलाउंस से लाभ उठाते हैं। स्टेट एज पेंशन के अमल में लाए जाने से आंकड़े भी प्रभावित होंगे। 13 वर्ष

0: कई विषयों के बारे में सीखेंगे, जैसे कि अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और एक साथ जीना। इस पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी इस तरह के सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को नेशनल क्राइम एजेंसी में परिवर्तित करने में कई चरण होंगे और मकसद भी इनमें से एक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना। ऐसा करने के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी है। ट्रांसपेरेंसी मॉरिशस के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोरा जयमंगल ने आज सुबह लमाचिनल कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने अतिरिक्त पारदर्शिता के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर भी जोर दिया। विदेशी समाचारों में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने ईयू का पहला सदस्य बनने के कनाडा के प्रस्तावों का समर्थन किया है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूरोपीय संसद को बताया कि वे कनाडा के लिए दरवाजा खोलने के बारे में काम करना चाहती हैं, जिससे कि कई अहम सेक्टरों को लेकर घनिष्ठ संबंध कायम किए जाने की बात शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे ईयू के साथ एक अद्वितीय संबंध कायम करना चाहते हैं। और गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लापता, इनमें बच्चे भी शामिल। मलबों तले से शवों और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर पूजा सबरवाल, जो कि आयुर्वेदिक चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हाई कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और बिल्कुल आज हम बात करेंगे विश्व आयुर्वेदा दिवस पर, यानी आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है, इस साल का थीम क्या है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या आज के आधुनिक समय में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज पाई जाती हैं, और क्या लोग आयुर्वेदा को आज भी उतना ही मान देते हैं, उतना ही उसमें विश्वास रखते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर पूजा जी से, पहले तो उनका स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, डॉक्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर जी, आज हम बात करेंगे विश्व आयुर्वेदा दिवस, तो पहले तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगी कि ये कब मनाया जाता है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है।
1: नमस्कार रत्ना जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में मुझे इनविटेशन के लिए। जैसा कि आपने पूछा, आयुर्वेदा डे जो है वो कब मनाया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो आयुर्वेदा डे है वो 2025 ऑनवर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उनकी तरफ से एक दिन जो है वो निर्धारित किया गया है 23rd सितंबर। तो 23rd सितंबर को आयुर्वेदा डे का सेलिब्रेशन होता है। इस साल भी हम 23rd सितंबर को आयुर्वेदा डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से अनाउंसमेंट्स भी हो चुकी हैं और प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो 23rd सितंबर को आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, और वो ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत में तो सेलिब्रेट किया ही जाएगा, थ्रू आउट ग्लोब जो है उसका सेलिब्रेशन होगा। और इस बार जो आयुर्वेदा डे का जो थीम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो निर्धारित किया गया है वो है आयुर्वेदा फॉर हेल्दियर टुमारो। ये इसका जो है वो बेसिक थीम है, आयुर्वेदा फॉर हेल्दियर टुमारो। मतलब किस तरह से हम अपना जो आने वाला समय है उसको हम हेल्दी रख सकते हैं, मतलब एक हेल्दियर कम्युनिटी की तरफ हम जा सकते हैं। वन हेल्थ वन फ्यूचर, ये उसका सब थीम है, वन हेल्थ वन फ्यूचर और आयुर्वेदा फॉर हेल्दियर टुमारो। और उसके आगे इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एविडेंस, इन सब चीज़ों को क्रिएट करना, इसका जो इस थीम को लेके इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट कर रही है। और मॉरिशस में एज हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ समय पहले ही, लास्ट मंथ ही, एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया विच इज़ लीडिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा डे 2026,

0: नो आयुर्वेदा कैंपेन, मतलब कि आइए और आयुर्वेद को जानिए। और उस कैंपेन के तहत हमने कुछ आउटरीच एक्टिविटीज़ हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बैनर के अंडर, नो आयुर्वेदा कैंपेन के अंडर कुछ आउटरीच एक्टिविटीज़ करी हैं। जैसे 2-3 जगहों पे हमने कुछ वर्कशॉप्स करी हैं, यूनिवर्सिटी में हमने स्टूडेंट वर्कशॉप करी है, एक आयुर्वेदा वॉक करी है, और इसी के साथ साथ हमने एक वुमेन हेल्थ पे एक वर्कशॉप करी, फोकस किया है। तो इस तरह से कुछ एक एक्टिविटीज़, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, कुछ आउटरीच एक्टिविटीज़ जो हैं वो आयुर्वेदा डे को लेते हुए, करते हुए, ध्यान में रखते हुए वो कैंपेनिंग स्टार्ट करी है। और 23 सितंबर को एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको उसके लिए इन्वाइट भी करती हूँ। IGCIC में, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में
1: जी,
0: हाई कमीशन की तरफ से हम एक आयुर्वेदा डे का बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशंस कर रहे हैं,
1: जहाँ
0: पर ओपन टू, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पर कई तरह की जो हैं वो एग्जीबिशंस होंगी, टॉक्स होंगी, आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स होंगे उसमें, कुछ एक यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ मिनिस्ट्री से एक्सपर्ट्स होंगे। तो एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर अलग अलग तरह की एकेडमिक टॉक्स भी रहेंगी, एग्जीबिशंस भी रहेंगी, और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम होगा। तो ये हम 23 सितंबर को मॉरिशस में भी आयुर्वेदा डे इस बार जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: तो डॉक्टर पूजा जी, आप यहाँ पर हैं, तो आप क्या बता सकती हैं कि भारत में ये किस तरह से मनाया गया था, और बिल्कुल आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि मॉरिशस में ये किस तरह से मनाया जाए?
0: जी जी, तो एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि ये हर साल मनाया जाता है, इसकी शुरुआत जो है वो 2016 में हुई थी। तो ये 11th आयुर्वेदा डे जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार, और हर वर्ष भारत में इसको मनाया जाता था धनतेरस के दिन, जब धनतेरस होता था, तो
1: धनवंतरी
0: क्योंकि धनवंतरी जी जो हमारे आयुर्वेद के जो हैं वो
1: देव
0: माने गए हैं, है ना, तो इसलिए ये हर धनतेरस को मनाया जाता था भारत में भी और हर जगह बाहर भी। तो लास्ट ईयर से, क्योंकि इसकी हर बार डेट फ्लक्चुएट करती थी, तो इसकी एक फिक्स डेट जो है वो कर दी गई निर्धारित मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। तो हर तरह की तरह ही इस बार भी भारत में 11th आयुर्वेदा डे, जो मैंने थीम बताया आयुर्वेदा फॉर हेल्थियर टुमारो, वन हेल्थ वन फ्यूचर, उस थीम के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ भारत में शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कि कई तरह की वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, क्विज और कॉम्पिटिशन्स, है ना, लेके अमंग स्टूडेंट्स ऑल्सो उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आप भी आयुर्वेद डे को सेलिब्रेट करिए। अलग अलग वहाँ के जितने कॉलेजेस हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह जो है वो आयुर्वेदा का सेलिब्रेशन 1-1.5 महीना पहले स्टार्ट हो चुका है, और जो मेन इवेंट है वहां पर भी वो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। उसी तरह से हम उन्हीं की डायरेक्शंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मॉरिशस में भी हम आयुर्वेदा डे को बहुत अच्छे तरीके से हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक इवेंट हम कल यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक आयुर्वेदा इन्फॉर्मेशन कॉर्नर एस्टेब्लिश कर रहे हैं लाइब्रेरी में, और उसके साथ कुछ एक एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, वो अपना टॉक देंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ हम मॉरिशस में भी कर रहे हैं, आयुर्वेदा डे को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: ओह, दैट्स रियली, मैं समझती हूँ यहाँ पर मॉरिशस में भी कई सारे लोग परिचित तो हैं आयुर्वेदा को लेकर। और मैं डॉक्टर जी से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर जी, जब आयुर्वेदा की हम बात करते हैं, हालांकि आज आधुनिक दौर चल रहा है, और बिल्कुल जो हमारी जो यूथ है, जो नवयुवक पीढ़ी है, नवयुवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहती है, तो अपना रुख करती हैं वो मेडिकल साइंस की ओर, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की ओर, मॉडर्न थेरेपीज़ की ओर। तो क्या आज के समय में भी यूथ एनकरेज होते हैं इस तरफ, यानी आयुर्वेदा की ओर झुकाव देने के लिए?
0: देखिए, ऐसा है, यूथ को लेके मैं इस माध्यम से मैं एक अपना मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहती हूँ। सिर्फ आयुर्वेद, देखिए, एक तो है प्राइमरली आपने क्या सब्जेक्ट लिया, ठीक है, कि आपने 12th के बाद या जहाँ यहाँ पर मॉरिशस में HSC जो है, उसके बाद आपने अपना करियर क्या चूज़ किया, आप मेडिकल जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, जैसी जो भी आपकी स्ट्रीम है। बट एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, अगर आपने अपना प्राइमरी जो सब्जेक्ट है वो आयुर्वेद नहीं भी लिया, तब भी आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं उसकी एक आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यूनिवर्सिटी में अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज भी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, फैकल्टी ऑफ IT है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब आयुर्वेद के अंदर इतना स्कोप है कि आप अपनी जो अपनी फैकल्टी है, अपनी स्ट्रीम है,

0: है उसको मत छोड़िए, उसके साथ साथ उसमें रहते रहते आपके लिए इतनी सारी स्टूडेंट्स के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, अब आप देखिए जो आयुर्वेद है उसके अंदर प्लांट रिसर्च है, तो एग्रीकल्चर के अंदर ही बायोटेक्नोलॉजी का भी एक स्ट्रीम है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है वो आयुर्वेद क्या एक जो सब्जेक्ट है जिसको हम प्लांट्स का रिसर्च बोलते हैं, उसमें अगर वो कुछ अपना इंटीग्रेटिव फॉर्म में रिसर्च करता है या करती है, जैसे कि प्लांट्स को लेके फाइटोकेमिकल स्टडी करना, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से स्टडी करना, एक ये उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अगर एग्रीकल्चर की बात करती हूँ तो फूड साइंसेज, इनोवेशन इन फूड साइंसेज, उसमें आयुर्वेद का जो बेसिक है उसको लेके स्टडी की जा सकती है। अगर आईटी की बात करूँ तो आईटी में ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिक्स, साइंस ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स है, तो साइंस ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स या फिर मशीन लर्निंग है, आजकल एआई का जमाना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग को लेके उसको अप्लाई करना आयुर्वेदा साइंस पे, कोर्सेज हैं ऐसे बहुत सारे जिसको फर्दर करके वो सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं इसमें, क्योंकि बेसिक तो एआई और आईटी का फील्ड है ही, उसके अंदर आयुर्वेद में वो कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ों को लेके करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। फिर उसके बाद स्टार्टअप्स हैं, वेलनेस इंडस्ट्री है, टूरिज़म इंडस्ट्री है, जिसमें स्टूडेंट्स अपना स्ट्रीम मत छोड़ें, ठीक है ना, मल्टीमीडिया स्टूडेंट्स हैं आजकल, देखिए आयुर्वेद से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो मल्टीमीडिया एक्सपर्ट्स है वो इस फील्ड में आ सकते हैं। तो इस तरह से वर्सटाइल डायनामिक फील्ड है जिसमें यूथ जो है वो अपना स्ट्रीम, जो बेसिक स्ट्रीम है उसको
1: कंटिन्यू
0: रख के उसको अप्लाई करे आयुर्वेदा फील्ड में,
1: तो यानी आगे चलकर मतलब बैलेंस जैसे कह सकते हैं कि पैरेलल आप कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप प्राचीन पद्धति को इस नए स्टाइल में या नए तरीके तौर तरीकों में आप डाल सकते हैं।
0: प्राचीन पद्धति प्राचीन ही रहेगी, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, बट उसको जो है अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो यूथ है उसको कैसे आज के टाइम में, क्योंकि हमें देखिए अपने आप को अपडेट रखना होता है, ऐसा तो है नहीं हमें टाइम के अकॉर्डिंगली, नहीं अगर हम, मैं ये कहूं कि हम पुराना ही मोबाइल लेके चलेंगे, हम नहीं स्क्रीन वाला मोबाइल लेंगे, हम नहीं यूज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम जमाने के हिसाब से आगे चल पाएंगे, तो हमें उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना होता है और उसी हिसाब से हमें अपने आप को अपडेट भी करना होता है।
1: बिल्कुल सही। और जी हाँ, जैसे जब हम वर्ल्ड आयुर्वेदा डे की बात कर रहे हैं, भले ही पद्धति प्राचीन है पर इस प्राचीन पद्धति के साथ भी बिल्कुल एक ठोस आपको गारंटी भी दी जाती है कि किस तरह से आप अपने शरीर को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने जीवन शैली को ढंग से रखते हुए, क्योंकि आज जहां पर हम बिल्कुल एक ऐसे तनाव भरे जीवन के साथ जीवन को आगे लेते हुए जा रहे हैं और इसी शैली के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर बीमारियाँ एक करके एक बढ़ती जा रही हैं, आपने देखा होगा विश्व भर में आज बीमारियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, पर इसके लिए अगर हमें अपने आप को तैयार करना है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डॉक्टर जी ने हमें बताया, बस इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होना और इसके साथ साथ हमें सीख कर आगे बढ़ना, यही एक तरीका है कि हम आयुर्वेदा को भी नई पद्धतियों के साथ अपनाते हुए आगे बढ़े। चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए।

0: की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा सब्रवाल, जो कि खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। वैसे हमने पिछले कई कार्यक्रम ऐसे किए हैं जहाँ पर हमारे साथ पूजा जी जुड़ी थी और आयुर्वेदा पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की, जीवन शैली पर, ऋतु के परिवर्तन पर, और किस तरह से हमारे जीवन में आयुर्वेदा का रोल होता है। और बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड आयुर्वेदा डे पर, और साथ ही साथ आज मॉरिशस की यूनिवर्सिटीज़ में भी आयुर्वेदा को लेकर कई सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो नवयुवा पीढ़ी है, युवक जो हैं, वो अगर इस फील्ड में जाना चाहें तो बिल्कुल कई सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है, जिस पर आइए जानते हैं पूजा जी से। पूजा जी, आज यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कौन कौन से ऐसे आयुर्वेदा को लेकर कोर्सेज दे रही हैं, प्रदान कर रही हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं।
1: जी जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूथ के लिए आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के की जा सकती हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो एक इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है कि अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी। जैसे अंडर ग्रेजुएशन 5.5 ईयर का कोर्स होता है, 5.5 साल का बीएमएस जिसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिनल सर्जरी। और उसके बाद फिर एमडी होता है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो 3 ईयर्स का होता है।
0: अच्छा।
1: ये हमारा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में एक वेल इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ।
0: जी।
1: और मॉरिशस में ऐसा है कि देखिए, हर कंट्री की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, अपना अपना एजुकेशन सिस्टम होता है। और मॉरिशस में सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलनेस जो है, वहाँ पर एक टीएमबी एक्ट है, ट्रेडिशनल मेडिसिनल बोर्ड है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं और सब। तो अगर एजुकेशन की बात करूँ

0: और उसकी बात करूं तो अभी मॉरिशस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में कुछ एक स्टैंड अलोन मॉड्यूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा एंड इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डाइटिक्स, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में उसको पब्लिसाइज किया गया है, ओपन है अभी, रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टिल इट इज़ ओपन. तो वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑफर दैट कोर्स, दैट इज़ मीन्स लाइक ऑलरेडी इन पब्लिक, और जो भी चाहे उसमें. ये थोड़ा सा अभी फुल फ्लेज्ड वो कोर्स नहीं है, जो स्ट्रक्चरल, जो इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है, जो 5.5 ईयर का BMS या फिर MD या फिर PhD, वो हम धीरे धीरे यहाँ का इंट्रोड्यूस करेंगे. बट उससे पहले कुछ एक स्टैंड अलोन कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं यूनिवर्सिटी में. इसके साथ साथ जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है यहाँ पे, उनका जो है वो एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज पे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के थ्रू बहुत जल्द कुछ माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज जो हैं वो अलग अलग यूथ के लिए, जैसे जो जिस स्ट्रीम में, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात की कि चर्चा की कि आईटी सेक्टर में जो एक स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है या बीएससी साइबर सिक्योरिटी कर रहा है या बीएससी एआई में कर रहा है, वो किस तरह का माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स आयुर्वेदा से रिलेटेड ऐसा कोई कोर्स करे जिसको, जो आगे चल के उसके करियर में उसको काम आए. तो इस तरह के माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज इन एसोसिएशन विद फैकल्टी, जो जिस फैकल्टी में मैं हूँ, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, और इन कलेबरेशन विद यूनिवर्सिटी में एक सिल है, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उनके साथ एसोसिएट करके अलग अलग फैकल्टी के साथ हम लोग कुछ एक माइक्रो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं यूथ के लिए, जो कि BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, जो आगे फर्दर इन कोर्सेज को, इन माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज को करके फर्दर अपना उसको जो है कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने करियर को इन्हांस करने के लिए. तो एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे एक तो हमारा स्टैंड अलोन कोर्स है इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा एंड इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डाइटिक्स. इसी तरह से फर्दर हम लेके आ रहे हैं कुछ एक स्टैंड अलोन माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज, जैसे कि आयुर इन्फॉर्मेटिक्स. आयुर इन्फॉर्मेटिक्स है आयुर्वेदा और इन्फॉर्मेटिक्स को जोड़ के, तो इस तरह, और उसका प्रॉपर हम एक्रेडिटेशन प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे आगे फर्दर जो है वो उस तरह से उसको फॉलो करके, बिल्कुल उसको बढ़ा के प्रॉपर एक्रेडिशन उसका करके, उसको जो भी यहाँ का एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का है या मॉरिशस के एजुकेशन सिस्टम का है, तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज लाएं और फिर फर्दर जो है वो फुल फ्लेज्ड जो हमारा आयुर्वेद का सिस्टम है उसको धीरे धीरे धीरे धीरे उसको भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें.
1: यानी जितना मैं समझ पाई हूँ, जो लोग, जो स्टूडेंट्स बीएससी के कोर्सेज करेंगे जो हेल्थ रिलेटेड होंगे, तो क्या उनके सिलेबस में या उनके कोर्स में कोई ऐसा मॉड्यूल रहेगा जो आयुर्वेदा को लेकर होगा?
0: वो भी कोशिश करेंगे हम कि उनके जो कोर्सेज में कुछ मॉड्यूल भी हम इंट्रोड्यूस करें, बट एक सेपरेट जो है वो माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज, जिसको माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स बोलते हैं हैक की तरफ से, जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से
1: थोड़ा डिटेल होगा
0: जो कि शॉर्ट कोर्सेज ही होंगे, बट वो अगर वो करते हैं तो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो अपनी फील्ड को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आयुर्वेद को आगे. मतलब
1: यानी इसमें कोई डिप्लोमा कोर्सेज भी होंगे जैसे आयुर्वेद?
0: वो भी कोशिश कर रहे हैं हम लाने की, डिप्लोमा कोर्सेज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं,
1: क्योंकि कई सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है कि एक छोटा सा, मतलब उसके बारे में जानकारी ही भले उनको मिल जाए, या 3 साल का जो कोर्सेज होता है
0: वो भी अंडर प्रोसेस है. वो भी जल्द हम कोशिश करेंगे कि डिप्लोमा कोर्सेज भी लेके आए.
1: बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आयुर्वेदा में इंटरेस्ट रखते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ओर से ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाकर इसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है. पर जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि ऑन गोइंग प्रोसेस है और बहुत सारी ऐसी जानकारी, बिल्कुल अभी थोड़े ही समय में हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले के तरह आगे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करके वापस आते थे, हो सकता है कि अब मॉरिशस में ही ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल होने लगे. और जैसे ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और जैसे डॉक्टर जी ने अभी भी बताया कि बिल्कुल इस पर काम किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा को लगकर आप सीख सकते हैं मॉरिशस में और आने वाले समय में, जहाँ पर AI का पूरा उपयोग, लगभग कहते हैं ना कि अब तो ज़िंदगी AI के द्वारा ही हम आगे बढ़ा पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो नई तकनीकों को आप प्राचीन पद्धतियों के साथ जोड़ के किस तरह से एक इनोवेशन ला सकते हैं, समाज में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है। और जब स्वास्थ्य की बात आती है और जहाँ पर आयुर्वेद बिल्कुल एक गारंटी

0: पद्धति है जो बिल्कुल अपनाई जाए जीवन शैली को बदलने के लिए, तनाव से मुक्त होकर जीवन किस तरह से जिया जाए, ये सारी चीज़ों को हम नई पद्धतियों के साथ जोड़कर एक नया जीवन किस तरह से जन्म ले सकता है, इस पर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। और आज आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर जी ज़रूर हमारे श्रोताओं को ये बताते चले, अब जैसे मॉरिशस में कुछ दिनों से जोरों की ठंडी हवाएं चल रही है, ऋतु में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसे परिवर्तन जीवन परिवर्तन में किस तरह से दिनचर्या को आप ढाल सकते हैं जब आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, तो आज के समय में आयुर्वेदा क्या मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी यही है कि भाई गोली खाओ और अपने दुख अपने जो शरीर के रोग है उसे दूर भगाओ, पर आयुर्वेदा इस पर किस तरह से बिल्कुल अमल करता है।
1: आपने एक बात बोली कि ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे जो आयुर्वेद संहिताएं हैं उसमें इसको बोला गया है ऋतु संधि। ऋतु संधि मतलब कि एक ऋतु से जब हम दूसरी ऋतु में जाते हैं, तो मॉरिशस में अभी वही वक्त चल रहा है,
0: सही,
1: है ना,
0: सही।
1: तो उसकी वजह से क्या है, कभी तो हमें सर्दी लगती है और कभी हमें लगता है नहीं नहीं अभी पंखा चला सकते हैं, ठीक है, अभी गर्मी है, तो ये जो सीजन होता है ना, ये एक इनवाइटिंग सीजन होता है जिसको बोलते हैं कि डॉक्टर सीजन भी बोल सकते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि फीवर होना या फिर हेडेक्स होना, मेटाबॉलिज्म भी जो बॉडी का होता है, डाइजेशन जो होता है, डाइजेस्टिव पावर जो होती है, ऋतु संधि चाहे वो किसी भी देश में हो, वो एक साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो वो एक ट्रांजिशनल फेज होता है, जैसे कि उस ट्रांजिशनल फेज में हमारी बॉडी जो है वो इंक्लाइंड होती है टूवर्ड्स कि हमारी डाइजेस्टिव फायर कम होती है, डाइजेस्टिव फायर कम होने की वजह से क्या होता है कि हमें भारी खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। यूजली आयुर्वेद में ये बोला गया है कि ईजीली डाइजेस्टेबल जो फूड होता है ऋतु संधि के टाइम पे, हमें वो सबसे पहला टिप मैं इस माध्यम से यही देना चाहूँगी श्रोताओं को कि बिल्कुल ईजीली जो डाइजेस्टेबल फूड होता है इस सीज़न में पर्टिकुलरली, कंसिडरिंग कि हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है फायर है वो लो होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा इतना फास्ट काम नहीं करता है, इसलिए हमें जितना इजीली जो डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हैं वो खानी चाहिए, ठीक है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना या कोल्ड बीवरेजेस ये सब लेना वो इस सीज़न में हमें अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मल जो है वो वाटर उसका इनटेक करना चाहिए। तीसरा जो है कुछ एक जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाली जो हर्ब्स होती हैं, किचन हर्ब्स होती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हमें साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि जिंजर है, ठीक है, जिंजर को ले सकते हैं, है ना, हल्दी तो हम लेते ही हैं, हल्दी का सेवन तो करते ही हैं,
0: इसी तरह से
1: लौंग भी, हाँ जी, और फेनिल जो है सौंफ, है ना, वो डाइजेशन को अच्छा रखती है, तो फेनिल सोक्ड वाटर जो है या फिर बॉइल्ड फेनिल के साथ जो बॉइल्ड वाटर है अगर हम वो डेली हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अगर हम अजवाइन डाल दें, वो डिपेंड करता है किसी को बहुत ज़्यादा अगर गर्मी नहीं अंदर होनी चाहिए तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो या कुछ हो तो हल्की मात्रा में अगर हम अजवाइन और सौंफ का पानी बॉयल करके लेते हैं तो वो भी हमारे डाइजेशन फायर को डाइजेस्टिव फायर को ठीक रखता है। कोशिश करें कि पेट साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं हो, ठीक है ना, तो फाइबर रिच जो है वो फूड जो है वो लेना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम जैसे कि खट्टी चीज़ें या जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, थोड़ा सा इस मौसम में हमें फास्टिंग की तरफ
0: करना चाहिए,
1: फास्टिंग की तरफ भी जाना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो श्रोताओं को कि इस सीज़न में थोड़ा सा फास्टिंग की तरफ भी अपना रखें, अगर हफ्ते में एक बार भी अगर आप फास्ट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसका रिजुविनेशन हो जाता है।
0: डॉक्टर जी यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि मॉरिशस में जिस तरह का ईटिंग हैबिट्स है, कई बार फास्टिंग जब हम बात करते हैं लोगों को ये लगता है कि मतलब फास्टिंग मतलब कुछ भी हो मीठा खा सकते हैं,
1: फास्टिंग
0: तो
1: का
0: यहां
1: मतलब
0: पर आप थोड़ा
1: नहीं,
0: सा
1: नहीं,
0: बताएं।
1: फास्टिंग का मतलब है कंप्लीट एब्सोल्यूट रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम,
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप फास्टिंग को पूरा सुबह से लेके रात तक आप कुछ नहीं खाएं, अगर आप शाम को 6 बजे 7 बजे कुछ खाया है तो नेक्स्ट डे तक अगर आप दिन के 12-1 बजे तक भी कुछ नहीं खाते हैं तो आप ये सोचिए कि शाम के 6 बजे का खाया हुआ नेक्स्ट डे आप 12-1 बजे अगर कुछ खा रहे हैं तो आपने कितना रेस्ट अपनी बॉडी को दिया।
0: सही।
1: जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आपके स्टमक को, लिवर को, पैनक्रियास को कितने खुश हो जाएंगे वो कि हमें रेस्ट मिल गया है, हमें कुछ करने को
0: काम नहीं
1: करना पड़ रहा, तो वो जितना भी है वो उससे क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलती है, आपके जो एंजाइम्स हैं वो और अच्छे से काम करते हैं, तो एब्सोल्यूट आप मत करिए क्योंकि रात भर तो आप सोए हैं,

0: उसके बाद 12-1 बजे तक तो मुझे लगता है कि हम इजीली कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं। और फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फास्टिंग वाली जो पदार्थ है वो और ओवरलोड अपने आप को कर लीजिए, ठीक है ना। एब्सोल्यूट फास्टिंग का मतलब है एब्सोल्यूट फास्टिंग, 12-1 बजे तक फास्टिंग कीजिए, उसके बाद वन टाइम जो है वो एक हल्की डाइट जो है वो लीजिए। इस सीज़न में खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीज़ों को लेना जो है वो जो इजी डाइजेस्टिबल हैं। तो आप देखिए, आपको कई ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेडिसिन्स की,
1: सही,
0: अनटिल एंड अनलेस कोई एक्यूट एमरजेंसी इशू नहीं है। आपको कोई भी एंटा एसिड्स, सर दर्द की दवाई, फीवर की दवाई, पेन किलर्स, पेन्स भी, हमें ऐसा लगता है पेन का क्या लेना देना हमारे खाने से, इन सब चीज़ों का लेना देना होता है। पेन्स भी आपकी जो है वो बॉडी में अगर हैं किसी और, हाँ मतलब कोई पैथोलॉजिकल पेन है या किसी गंभीर बीमारी से है वो एक अलग बात है। एक होता है ना एक जनरलाइज फटीग रहना बॉडी में, ठीक है, मतलब एक
1: लेथार्जिक
0: फील होना, लो एनर्जी फील होना, इसमें ये बहुत सिंपल टिप्स हैं। आप अपनी डाइट ठीक रखिए, आप अपनी नींद ठीक रखिए, आप अपना लाइट कोई एक्सरसाइज डेली, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 पिलर्स ऑफ लाइफ जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, आहार मतलब डाइट, निद्रा मतलब स्लीप, ब्रह्मचर्य मीन्स प्रॉपर लाइफस्टाइल, इन तीन चीज़ों के अगर ऊपर हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भी वर्कआउट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें हर वक्त पिल्स लेने की ज़रूरत है, हर वक्त हमें जो है वो फटीग और लो एनर्जी, मतलब ये आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, ये कर सकते हैं हम। क्योंकि मीठा जब हम जितना ज़्यादा खाते हैं इंस्टेंट, तो हमें वो एनर्जी देता है, वो अंदर वो हमारा कितना डैमेज करता है वो हमें पता भी नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि एक कुछ मीठी चीज़ खा ली, अच्छा लग रहा है, थोड़ा हैवी मतलब एनर्जी लग रही है, पर वो अंदर जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है।
0: और मीठा, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 80% आप अपनी फिजिकल बॉडी के लिए टारगेट रखिए और 20% अपनी सोल को भी नरिश कीजिए। तो हमें अपने 20% सोल को भी नरिश करना, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही अपने आप को उन सब
1: लेट गो करना।
0: यस, हर चीज बैलेंस में रहते हुए।
1: बिल्कुल, तो बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं। वर्ल्ड आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा 23rd of September यानी 23 सितंबर को। जाते जाते डॉक्टर पूजा जी, आप फिर एक बार हमें बता दीजिए कि कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक, कहां पर
0: जी।
1: तो हमारी जो जनता है अगर वो विजिट करना चाहे तो कितने मतलब वो
0: जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी हमने स्टार्ट करी हुई हैं। हम अलग अलग विलेजेस में जा रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए आयुर्वेद के जरिए, कि आयुर्वेद को अपनाएं और कैसे आप अपना आयुर्वेद को अपनाकर अपनी जीवन शैली को अच्छा रखकर एक स्वस्थ जो है वो एक मॉरिशियस हमारा जो है वो डिजीज फ्री रहे, तो उसके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं। इसके साथ साथ हम जो है वो 23 सितंबर को IGCIC में हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है वो एक प्रोग्राम वहाँ पर हम कर रहे हैं। तो भारत में तो चल ही रहा है, वहाँ पर और भी सभी देशों में आयुर्वेदा डे को लेके बहुत अच्छे से सेलिब्रेशंस जो हैं वो हो रही हैं।
1: और यहाँ पर IGCI में कितने बजे से कितने बजे तक की होगा?
0: सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक जो है वो पूरा प्रोग्राम है। एग्जीबिशंस भी रहेंगी और कॉन्फ्रेंस भी रहेगी उसमें।
1: बिल्कुल, तो जी हाँ, जनता से मांग है अगर आप भी आयुर्वेदा के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी उपलब्ध करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए। और बिल्कुल 23 सितंबर जो मनाया जाएगा विश्व आयुर्वेदा दिवस के उपलक्ष में ये दिन मनाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, आज हमारे मंच पर डॉक्टर पूजा सबरवाल उपस्थित रहीं और बिल्कुल हाई कम ऑफ इंडिया की सहयोग से, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से वे यहाँ पर स्थित हैं और एज आयुर्वेदिक चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में स्थित है, उसी के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम हमने आप तक पहुंचाया। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में सहयोग प्राप्त हुआ टेक्निक पर हमारे साथ बने रहे फैजान उरुसा हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट, और रत्नमाला मंगरू जी जो हमारे साथ बनी रहीं एज अ प्रोड्यूसर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। मैं थी रत्ना और बिल्कुल आपका साथ दे रही थी इस वक्त रेडियो मनोरंजन पर, रेडियो मॉरिशस पर। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। रजनी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरुआत हम स्वास्थ्य के साथ करते हैं। जी हाँ, मॉरिशस में लगभग 100 ऐसे शिशुओं का जन्म होता है जिन्हें हृदय में किसी तरह का मालफॉर्मेशन होता है। पेड्रियाटिक कार्डियोलॉजिस्ट के दो स्पेशलिस्टों की एक टीम इन दोनों मॉरिशस में है और वे मिनी इन्वेसिव सर्जरीज कर रही हैं। इस टेक्निक की बदौलत कुछ मालफॉर्मेशन का इलाज बिना थोराक्स खोले किया जा सकता है, साथ ही अस्पताल में रहने की अवधि भी घटाई जा सकती है। वे ज्यादा जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। अभिभावकों के लिए ये एक भारी राहत की बात है। इन दिनों 2,73,000 से अधिक मॉरिशन और रोड्रिक्स वासियों को बेसिक पेंशन प्राप्त हो रही है। इसी सप्ताह प्रकाशित समाज सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में अगस्त महीने के अंत में लाभार्थियों से संबंधित जानकारियां दी गईं। इनमें से 5,300 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 90 वर्ष की आयु से कम है और इनमें 242 शतायु प्राप्त लोग भी हैं। इस बुलेटिन में उन लाभार्थियों के नाम भी शामिल जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स और कई सोशल अलाउंस के लाभ उठाते हैं। स्टेट एज पेंशन के अमल में लाए जाने से आंकड़े भी प्रभावित होंगे। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी।

सी। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के लिए सत्र में भाग लेंगे और इसके दौरान वे कई बातें सीखेंगे, अनुशासन, सेवा भाग, जिम्मेदारी आदि। पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी सत्र में भागने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। विदेशी समाचारों में कोसोवो के पूर्व अध्यक्ष हाशिम ताची को युद्ध अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। इनमें हत्या, अत्याचार और कोसोवो युद्ध अपराध अदालत की ओर से गैरकानूनी हिरासत शामिल। 58 वर्षीय

0: सुनाई गई है। 1990 में सर्बिया में इलाके की हिंसक हादसों के दौरान अल्बेनियन कोसोवो लिबरेशन आर्मी के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से किए गए जुर्मों के लिए उसे दोषी पाया गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने ईयू का पहला सदस्य बनने के कनाडा के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उर्सुला वन डर लेयन ने यूरोपीय संसद को बताया कि वे कनाडा के लिए दरवाजा खोलने के बारे में काम करना चाहती है, जिससे कि कई अहम सेक्टरों को लेकर घनिष्ठ संबंध कायम किए जाने की बात शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे ईयू के साथ एक अद्वितीय संबंध कायम करना चाहती है। और गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए, दर्जनों लापता, इनमें बच्चे भी शामिल। मलबों तले से शवों और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

तो चलिए दोस्तों, इस वक्त आप कनेक्टेड हैं RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ एंड दिल से मिले दिल, हमारा ये प्रोग्राम जहां पर शामिल होंगे ऐसे गाने जो आपके दिन भर की थकान को थोड़ा सा दूर करेंगे। आफ्टर वर्क टाइम टू एंजॉय सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स रेडियो मनोरंजन के साथ।

0: RM3 Radio.
1: और चलिए, दिल खो गया तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आपके दिल को हम संभाल जरूर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारी विजया जी आई हैं हमारा साथ निभाने, हमेशा साथ निभाती हैं। सो यहाँ पर, यानी कि RM3 रेडियो मनोरंजन पर भी हम आपका वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, और साथ देने के लिए शुक्रिया। अभी के लिए यहाँ पर गानों को एंजॉय कर रहे हैं हमारे सभी सिलू परिवार है, एक्वायर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और सभी पेंटिया परिवार भी हमारा साथ दे रहे हैं। सो साथ देने के लिए शुक्रिया, और लेकर चलते हैं आपको डाउन मेमोरी लेन। माचिस फिल्म का ये गाना हरिहरन साहब, सुरेश वाडकर, विनोद सहगल की आवाजें साथ दे रहे हैं। KK, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक। Enjoy this one.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: So, well, some beautiful songs आपके लिए दिल से मिले दिल प्रोग्राम जहां पर मैं हूं परी आपके साथ शाम के 5 बजे तक अभी के लिए ये जो गाना है हमारी प्यारी सी रेखा जी हमारा साथ दे रही हैं साथ में डेडिकेट कर रही हैं गाना फॉर बेटा अंश पोमोजे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप साथ देने के लिए शुक्रिया एंजॉय योर आफ्टरनून एंड एंजॉय द सॉन्ग्स ऑन रेडियो मनोरंजन

0: हम।
1: और चलिए दोस्तों अगले गीत के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। हम तो चले लेकिन यहाँ पर आपके लिए खूबसूरत गानों का कारवां जारी रहेगा। यह है आपका अपना RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ निभाते रहिए। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए ये खूबसूरत गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. अनकही एक कहानी

बुद्धिं प्रदेहि मे नित्यं विद्यां यच्छ गणाधिप सिद्धिं च मे प्रयच्छ त्वं सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे गणों के अधिपति गणेश जी, मुझे सदैव बुद्धि प्रदान करें, मुझे विद्या प्रदान करें और मेरे सभी कार्यों में हमेशा सफलता प्रदान करें। श्रोताओं, सही निर्णय लेने की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। आधुनिक युग में सूचना की प्रचुरता है, इसीलिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। विद्या का अर्थ निरंतर सीखते रहना है। नई चुनौतियों के दौर में व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग लर्निंग अर्थात जीवन पर्यंत सीखने की भावना अपनानी चाहिए। ज्ञान के साथ विवेक भी आवश्यक है। आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में यह समझना ज़रूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं।

0: यह कार्यक्रम महात्मा गांधी संस्थान और MBC के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राजशेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु विश्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हमारे मन में एक सुंदर छवि उभरती है। ढोल नगारों के बीच घर में विराजते गणपति बप्पा 10 दिनों तक उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना और फिर भावपूर्ण विदाई के साथ उनका विसर्जन। लेकिन प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने और फिर उसका विसर्जन करने के पीछे कौन सा गहरा संदेश छिपा है? आज की हमारी कहानी केवल भगवान गणेश के जन्म की कथा नहीं है, यह कहानी है माता की आज्ञा के प्रति अटूट निष्ठा, ज्ञान के प्रति समर्पण, विवेक, एकाग्रता और त्याग की। तो आइए इस पावन अवसर पर सुनते हैं गणपति बप्पा, एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था के साथ ज्ञान है, भक्ति के साथ विवेक है और उत्सव के साथ प्रकृति का गहरा संदेश भी छिपा है। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जब हम ढोल नगारों के साथ गणपति बप्पा को अपने घरों में लाते हैं और 10 दिनों तक अनन्य भाव से सेवा करने के बाद अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस उत्सव के पीछे कितना बड़ा रहस्य छिपा है? यह कहानी केवल एक धार्मिक परंपरा की नहीं, बल्कि एक ऐसे अलौकिक समर्पण, असह्य शारीरिक ताप और महातपस्या की है जिसने संपूर्ण मानव जाति को धर्म और कर्म का सबसे महान ज्ञान दिया है। पावन कैलाश पर्वत पर चारों ओर शीतल मंद पवन बह रही थी और सर्वत्र अलौकिक शांति छाई हुई थी। जगदम्बा माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। उस समय भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे और सभी शिवगण भी इधर उधर विचरण कर रहे थे। कैलाश के मुख्य द्वार पर कोई भी प्रहरी उपस्थित नहीं था। माता पार्वती मन ही मन विचार कर रही थी कि द्वार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो किसे सौंपा जाए। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं ही अपने एक ऐसे रक्षक का सृजन करेंगी जो केवल उनकी आज्ञा का ही पालन करे। और यही सोचकर माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन और चंदन के लेप को एकत्रित किया तथा अपनी अलौकिक शक्तियों से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक की आकृति बनाई। जैसे ही माता ने उसमें प्राणों का संचार किया, वह बालक अलौकिक कांति से चमक उठा। दिव्य चेतना पाते ही वह बालक विनीत भाव से माता पार्वती के समक्ष खड़ा हो गया और फिर उन्होंने कहा,
0: प्रणाम माते, मेरी आंखें खुलते ही आपकी यह ममतामयी छवि मेरे सामने है। कृपा कर मुझे आज्ञा दें, इस बालक का जीवन किस प्रयोजन के लिए निर्मित हुआ है? मेरा क्या कर्तव्य है माते, क्या कर्तव्य है?
1: माता पार्वती वात्सल्य से भर उठी और उस बालक को गले लगाते हुए कहती हैं, हे पुत्र, तुम मेरे मानस पुत्र हो, आज से तुम मेरी सुरक्षा के प्रहरी हो। मैं भीतर स्नान करने हेतु जा रही हूं। जब तक मैं अपना स्नान पूर्ण करके बाहर ना आ जाऊं, तब तक किसी भी जीव, देव, असुर अथवा स्वयं मेरे गणों को भी इस द्वार के भीतर प्रवेश मत करने देना। यह तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है।
0: माते, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। आप निर्भय होकर भीतर पधारें। जब तक आपकी इस संतान की शिराओं में रक्त का एक भी बिंदु शेष है, तब तक त्रिलोक की कोई भी शक्ति

0: शक्ति आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती।
1: माता पार्वती निश्चिंत होकर भीतर स्नान गृह में चली गई। बालक ने अपने हाथ में एक विशाल स्वर्ण दंड संभाला और अत्यंत सजगता और दृढ़ता के साथ कैलाश के द्वार पर पहरा देने लगा। उसकी आंखों में अपनी माता की आज्ञा के प्रति अटूट निष्ठा का तेज चमक रहा था। कैलाश के पावन द्वार पर बालक अत्यंत दृढ़ता से पहरा देने लगा। तभी दूर दिगंत में डमरू की गंभीर ध्वनि गूंज उठी। भगवान शिव अपनी समाधि पूर्ण करके कैलाश की ओर लौट रहे थे। उनके साथ नंदी, भृंगी और समस्त शिवगणों की टोली भी चल रही थी। महादेव जैसे ही अपने भवन के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने द्वार पर एक अनजान तेजस्वी बालक को हाथ में स्वर्ण दंड लिए खड़े देखा। शिव जी निश्चिंत भाव से भीतर जाने लगे, किंतु उस अबोध बालक ने अपना दंड आगे करके उनका मार्ग अवरोध कर दिया। कैलाश पति को अपने ही द्वार पर रोके जाने का दृश्य देखकर शिवगण स्तब्ध रह गए। तत्पश्चात शिव जी ने उस बालक की ओर देखते हुए कहा, बालक, तुम कौन हो जो मुझे मेरे ही भवन के मुख्य द्वार पर रोक रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि तुम साक्षात कैलाश पति का मार्ग अवरुद्ध करने का दुस्साहस कर रहे हो? तुरंत मार्ग से हट जाओ।
0: हे योगी, आप चाहे इस त्रिलोक के स्वामी हो या कोई साधारण पथिक, किंतु इस समय मेरी माता जगदम्बा पार्वती स्नान गृह में है। जब तक वे स्वयं बाहर आकर आज्ञा न दें, तब तक कोई भी प्राणी इस द्वार की चौखट को पार नहीं कर सकता।
1: अरे अबोध बालक, तुम अपने विवेक से काम लो। तुम जिनकी आज्ञा की दुहाई दे रहे हो, वे पार्वती मेरी ही अर्धांगिनी हैं, और यह मेरा अपना गृह है। गृहपति को अपने ही घर में प्रवेश करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। बालक,
0: मुझ बालक को छद्म वचनों से भ्रमित करने का प्रयास न करें। मेरी माता ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी स्थिति में किसी को भीतर न जाने दिया जाए। मेरी निष्ठा केवल अपनी माता के वचनों के प्रति है। यदि आप बलपूर्वक भीतर जाने का प्रयास करेंगे तो मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा।
1: अज्ञानता में बहकर अपने प्राण संकट में मत डालो। बालक, नंदी, इस बालक को समझाकर मार्ग से हटाओ। महादेव के संकेत पर नंदी और समस्त शिवगण बालक को पीछे ढकेलने के लिए आगे बढ़े, किंतु उस बालक ने अपने अद्वितीय कौशल और असीम शक्ति से समस्त शिवगणों को क्षण भर में परास्त कर दिया। जब बालक किसी प्रकार मार्ग छोड़ने को तैयार नहीं हुआ और देवताओं के प्रयास भी निष्फल हो गए, तब महादेव अति क्रोधित हो उठे। कैलाश पर्वत भयंकर कंपन से कांपने लगा। क्रोधाग्नि में जलते हुए शिव जी ने अपने त्रिशूल का आह्वान किया और क्षण मात्र में त्रिशूल ने बालक की ग्रीवा को धर से अलग कर दिया। बालक का निष्प्राण शरीर भूमि पर गिर पड़ा और संपूर्ण कैलाश पर एक भयावह सन्नाटा छा गया। कैलाश के द्वार पर बालक का रक्तिम निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ था और चारों ओर भयप्रद सन्नाटा छाया हुआ था। तभी स्नान गृह का द्वार खुला और माता पार्वती प्रसन्नचित होकर बाहर निकली, किंतु सामने का दृश्य देखते ही उनके पैर ठिठक गए। द्वार पर उनके निश्चल मानस पुत्र का सिर धर से अलग पड़ा था और समीप ही हाथ में त्रिशूल लिए महादेव तथा भयभीत शिवगण खड़े थे। अपने पुत्र की यह दुर्दशा देखकर माता पार्वती का वात्सल्य क्षण भर में प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में भयंकर कंपन होने लगा, दिशाएं कांपने लगी और माता के आदि शक्ति का विकराल महाकाली रूप धारण कर लिया। उनके इस उग्र रूप को देखकर त्रिदेव और

0: समस्त देवगण कांप उठे। तत्पश्चात महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती ने अत्यंत भयानक एवं क्रुद्ध स्वर में कहा, हा पुत्र, यह क्या अनर्थ कर दिया स्वामी आपने मेरी निष्पाप संतान का इस भांति संहार। जिस पुत्र को मैंने अपनी ममता और प्राणों से सींचा था, उसे आपने अपने त्रिशूल का ग्रास बना दिया स्वामी, क्या यही आपकी न्यायप्रियता है?
1: देवी, शांत हो जाओ। यह बालक अज्ञान वश मेरा मार्ग रोक कर हट कर रहा था। मैंने इसे समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इसके अहम और हट के कारण यह अनर्थ घटित हो गया। मुझे ज्ञात न था कि यह तुम्हारा मानस पुत्र है।
0: शांत स्वामी, शांत। एक माता से उसके पुत्र की निर्मम हत्या के बाद शांत रहने को कह रहे हैं आप? सुन ले त्रिलोकपति, यदि मेरे इस पुत्र को इसी क्षण पुनः नवजीवन प्राप्त नहीं हुआ तो मेरी क्रोधाग्नि समस्त सृष्टियों, देवों और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर देगी। आज इस सृष्टि का अंत होकर रहेगा स्वामी, अंत होकर रहेगा।
1: हे जगदम्बे, अपने इस प्रलयनकारी रूप का संवरण करो। सृष्टि के संतुलन हेतु तुम्हारा शांत होना अनिवार्य है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र को जीवन दान अवश्य मिलेगा। हे नंदी, हे भृंगी, अविलंब उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करो। मार्ग में जो भी प्रथम जीव अपनी माता की ओर पीठ करके सोता हुआ मिले, उसका मस्तक काट कर तुरंत यहां ले आओ।

0: महादेव की आज्ञा पाते ही नंदी और अन्य गण तीव्र गति से उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। मार्ग में उन्हें एक अत्यंत ज्ञानी और शांत गजराज हाथी दिखाई दिया, जो उत्तर दिशा में मस्तक करके सो रहा था। गणों ने उस गजराज का मस्तक छेदन किया और उसे कैलाश ले आए। भगवान शिव ने उस दिव्य गज मस्तक को बालक के धर से जोड़ा और अपनी योग शक्ति से उसमें प्राणों का संचार कर दिया। बालक सहसा चैतन्य होकर उठ बैठा और माता पार्वती ने सुपूर्ण नेत्रों से अपने गजानन पुत्र को हृदय से लगा लिया। कैलाश पर्वत पर मंडरा रहे महाप्रलय के काले बादल अब पूरी तरह छट चुके थे। नवजीवन प्राप्त बालक गजानन अपनी माता पार्वती की गोद में विराजमान था और संपूर्ण देवलोक से उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। किंतु माता पार्वती के मन में अभी भी एक गूढ़ जिज्ञासा शेष थी। वे सोच रही थी कि उनके अति सुंदर और कोमल पुत्र के धर पर एक गजराज का ही मस्तक क्यों लगाया गया। माता पार्वती ने असीम वात्सल से बालक के विशाल मस्तक पर हाथ फेरा और महादेव की ओर दृष्टि उठाकर अपनी शंका प्रकट की। तत्पश्चात भगवान शिव माता पार्वती और बालक गजानंद के मध्य एक पावन संवाद हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान करके आपने संपूर्ण सृष्टि को प्रलय की अग्नि से बचा लिया, किंतु मेरे हृदय में एक कौतूहल निरंतर हिलोरें ले रहा है। इस त्रिलोक में अनेकों दिव्य प्राणी थे, फिर मेरे पुत्र के धर पर इस गजराज का ही मस्तक क्यों सुशोभित किया गया? इसके पीछे कौन सा पूर्व जन्म का रहस्य या नियति का विधान छिपा है?
1: देवी, इस संसार में कोई भी अलौकिक घटना अकारण नहीं घटित होती। इसके पीछे गजासुर नामक दैत्य की कठोर तपस्या और मेरा दिया हुआ अमर वरदान समाहित है। पूर्व काल में गजासुर ने मेरी अनन्य भक्ति करके मुझसे यह वर मांगा था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका मस्तक तीनों लोकों में सदैव पूजनीय बने और स्वयं परब्रह्म का कोई रूप उसे अपने अंग पर धारण करे। आज नियति ने उसी वचन को सत्य सिद्ध कर दिया।
0: माता पार्वती और पिता भगवान शिव

0: के बीच हो रहे वार्तालाप को सुनकर बालक गजानन भी बोल पड़े, पितृदेव, तो क्या यह गजमस्तक केवल एक प्राचीन वचन की पूर्ति मात्र है या इसका कोई उच्च आध्यात्मिक महत्व भी है?
1: नहीं पुत्र, यह गजमस्तक केवल एक वरदान की पूर्ति नहीं, अपितु अगाध ज्ञान, दूरदर्शिता और सर्वोपरि विद्वत्ता का जीवंत प्रतीक है। गजराज का मस्तिष्क असीम स्मृति शक्ति और गंभीर चिंतन का भंडार होता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त ब्रह्मांड में सबसे महाज्ञानी, सर्वशास्त्र पारंगत और बुद्धि के अधिपति कहलाओगे। तुम्हारा यह मस्तक समस्त ऋषियों, मुनियों और देवताओं के लिए वंदनीय होगा।
0: महादेव के इन ओजस्वी वचनों को सुनते ही समस्त देवगण और गंधर्व जय गजानन के उद्घोष से संपूर्ण कैलाश को गुंजायमान करने लगे। बालक गजानन ने परम श्रद्धा से अपने माता पिता के श्री चरणों में मस्तक नवाया और त्रिदेवों का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार गजासुर का पूर्व जन्म का संकल्प सिद्ध हुआ और बालक गजानन ब्रह्मांड में बुद्धि एवं सिद्धि के सर्वोपरि देव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव ने गजानन को विद्वत्ता और सर्वोपरि पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया, तब चारों ओर दिव्य चेतना का प्रसार होने लगा। कैलाश की उस अलौकिक सभा में पितामह ब्रह्मा, भगवान विष्णु और ऋषियों मुनियों का आगमन हुआ। सभी देवगण गजानन के इस अद्भुत और अनोखे गज मस्तक वाले स्वरूप को विस्मयपूर्वक निहार रहे थे। पितामह ब्रह्मा के मन में गजानन के इस दिव्य अंग विन्यास के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने की लालसा जगी। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए गजानन के समीप आए और गजानन तथा ब्रह्मा जी के मध्य यह ज्ञानवर्धक संवाद भी प्रारंभ हुआ। पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, महादेव के आशीर्वाद से आप इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च विद्वान और बुद्धि के अधिपति तो बन चुके हैं, किंतु आपका यह स्वरूप केवल दर्शनीय ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के लिए जीवन का महान दर्शन है। क्या आप देवगणों के समक्ष अपने इन अंगों की अलौकिक विशेषताओं का रहस्य उजागर करेंगे?
1: हे पितामह, आप तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके ही मार्गदर्शन में अपने इस गज रूप की सार्थकता व्यक्त करूं। मेरे ये विशाल सूप जैसे कान मनुष्य को सिखाते हैं कि एक सच्चे विद्वान को संसार की व्यर्थ बातों को त्याग कर केवल सार गर्भित और नीति परक बातों को ही ग्रहण करना चाहिए।
2: अति उत्तम गजानन, अति उत्तम। और आपकी ये सूक्ष्म आँखें एवं यह विशाल मस्तक मानव जाति को क्या संदेश देते हैं?
1: पितामह, मेरी ये छोटी और सूक्ष्म आँखें तीक्ष्ण दृष्टि, एकाग्रता और दूरदर्शिता की प्रतीक हैं, जो व्यक्ति को बाह्य दिखावे से परे परम सत्य को देखने की शक्ति देती है। मेरा यह विशाल मस्तक अगाध विचार शक्ति, असीम ज्ञान और गंभीर चिंतन की क्षमता को दर्शाता है। वहीं मेरी यह लचीली सूंड़ परिस्थिति के अनुसार ढलने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का संदेश देती है।
2: अहो विनायक, अहो, आपका यह विशाल पेट लंबोदर भी तो एक महान सत्य छुपाए हुए है।
1: सत्यवचन पितामह, सत्यवचन। मेरा यह लंबोदर रूप मानव को सिखाता है कि जीवन में मिलने वाली अच्छी और बुरी, कटु और मधुर सभी बातों को पचाकर अपने भीतर समा लेना चाहिए ताकि समाज में अशांति न फैले।
0: गजानन के मुख से उनके स्वरूप का यह गूढ़

खात्मिक अर्थ सुनकर पितामह ब्रह्मा, भगवान विष्णु और कैलाश पर उपस्थित समस्त मुनिगण भाव विभोर हो उठे। सभी को यह स्पष्ट समझ आ गया कि गजानन केवल शारीरिक रूप से दिव्य नहीं अपितु सर्वव्यापी ज्ञान और विवेक के साक्षात पुंज हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी अलौकिक विद्वत्ता का डंका बजने लगा।

हिमालय की बर्फीली वादियों में बसे माना गांव की पावन ब्यास गुफा में अलौकिक आध्यात्मिक शांति छाई हुई थी। द्वापर युग के अंतिम चरण में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे। उनके मस्तिष्क में 1,00,000 श्लोकों वाला विशाल महाकाव्य महाभारत आकार ले चुका था, किंतु उनके विचारों की तीव्र गति से उसे भोजपत्रों पर लिपिबद्ध कर पाना किसी साधारण मानव के बस का नहीं था। पितामह ब्रह्मा के निर्देश पर महर्षि व्यास ने विघ्नहर्ता गजानंद का ध्यान किया। पलक झपकते ही भगवान गणेश दिव्य ज्योति के साथ गुफा में प्रकट हो गए। तत्पश्चात महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के बीच वार्तालाप प्रारंभ हुआ। महर्षि वेद व्यास ने गंभीरता के साथ कहा,

0: हे विघ्नहर्ता गजानंद, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु मेरे मन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से परिपूर्ण महाग्रंथ महाभारत का प्रकाट्य हुआ है, किंतु मेरी विचार गति इतनी तीव्र है कि इसे लिपिबद्ध करने के लिए मुझे केवल आपकी अगाध बुद्धि और अलौकिक क्षमता की आवश्यकता है।
1: हे मुनिश्रेष्ठ, ज्ञान और धर्म के इस भगीरथ कार्य हेतु मैं आपका लेखक बनने को तत्पर हूँ, किंतु मेरी एक अत्यंत कठोर शर्त है। जब आप श्लोक बोलना प्रारंभ करेंगे तो मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगी। यदि आप एक पल को भी ठहरे तो मैं उसी समय लिखना बंद कर दूंगा।
0: भगवान गणेश की शर्त सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा, मुझे आपकी यह शर्त सहर्ष स्वीकार है प्रभु, किंतु मेरी एक सूक्ष्म शर्त है। आप बिना श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से समझे एक भी शब्द लिपिबद्ध नहीं करेंगे।
1: ओम, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है महर्षि, आइए इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करें।
0: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के पावन दिन से महाभारत का लेखन कार्य आरंभ हुआ। महर्षि व्यास जटिल श्लोक बोलते, जिन्हें समझने में गणेश जी को कुछ क्षण लगते, और उसी बीच व्यास जी अगले श्लोकों की रचना कर लेते। दोनों के मध्य एक अद्भुत तालमेल बैठ गया, किंतु प्रचंड गति से लिखते हुए सहसा गणेश जी की कलम खंडित हो गई। शर्त के अनुसार गणेश जी रुक नहीं सकते थे।
1: ज्ञान के इस पावन प्रवाह में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। मेरी लेखनी भले ही टूट गई हो, किंतु मेरा स्वयं का अंग ही अब इस महाकाव्य की कलम बनेगा।
0: और यह कहकर गजानंद ने बिना एक पल गंवाए अपना एक दांत स्वयं ही उखाड़ लिया और उसे अमिट कलम बनाकर पुनः बिजली की गति से लिखने लगे। इस अलौकिक समर्पण से वे एक दंत कहलाए। बिना सोए, बिना अंजल ग्रहण किए यह महातपस्या लगातार 10 दिनों तक चलती रही। व्यास गुफा में 10 दिनों का महाज्ञान यज्ञ अपने अंतिम चरण में था। लगातार 10 दिन और 10 रात तक बिना रुके, बिना सोए हुए ब्रह्मांड के ज्ञान को अपने मस्तिष्क से गुजारने के कारण साक्षात पर ब्रह्म गणेश जी का शरीर भयंकर ताप की अग्नि से तपने लगा। उनकी आंखों से मानो ज्वाला निकल रही थी और वे पसीने से लथपथ थे। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महर्षि वेद व्यास ने अपना अंतिम श्लोक पूर्ण करके आंखें खोली तो वे अपने आराध्य की अव्यथा देखकर स्तब्ध रह गए। गणेश जी का संपूर्ण शरीर कठोर हो चुकी पार्थिव मिट्टी के आवरण में कैद था। महर्षि वेद व्यास ने उनकी स्थिति देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने कहा, हे ज्ञान के सागर विघ्नहर्ता, आपने मानव जाति को महाभारत का अमर ज्ञान प्रदान करने हेतु अपने शरीर को 10 दिनों तक भयानक ताप में तपाया। मेरे द्वारा आपके शरीर पर लगाया गया ठंडी मिट्टी का लेप भी आपके प्रचंड ताप में सूख कर ईंट की तरह कठोर हो चुका है। अब मैं आपको और पीड़ा में नहीं देख सकता प्रभु।
1: मुनिवर, ज्ञान की रक्षा हेतु यह शारीरिक ताप मेरे संकल्प से बड़ा नहीं था, किंतु अब इस महाकाव्य का लेखन पूर्ण हो चुका है। मेरी इस पार्थिव काया के ताप को शांत करने का समय आ गया है।
0: हे प्रभु, मैं अत्यंत कोमलता से आपकी इस पार्थिव प्रतिमा को उठाकर समीप बहती शीतल सरस्वती नदी के पवित्र जल में पधराता हूँ, ताकि जल की शीतलता आपके स...

शरीर के ताप को पूर्णतः शांत कर दे। महर्षि व्यास रोते हुए उस पार्थिव गणेश को उठाकर सरस्वती के शीतल जल में विसर्जित करते हैं। जल के स्पर्श से सूखी मिट्टी धीरे धीरे पानी में घुल जाती है और गणेश जी का वास्तविक दिव्य सौम्य रूप पुनः निखर आता है। यही मानव इतिहास का प्रथम गणेश विसर्जन था। विसर्जन जल में मिट्टी का विलीन होना सिखाता है कि जो आकार मिट्टी से निर्मित हुआ है उसे अंततः प्रकृति में ही लौटना है। यही विनायक चतुर्थी के 10 दिनों का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य, अटूट निष्ठा और आज के संदर्भ में सार्वभौमिक महासंदेश भी है।

तो प्रिय श्रोतागण, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? और जो कहानी अभी आपने सुनी उसमें आपने देखा कि यह जो गणेश विसर्जन है उसका पहला इतिहास क्या है। साथ ही अब आपके लिए एक केंद्रीय संदेश भी है इस कहानी का। जीवन में केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, शक्ति के साथ विवेक, ज्ञान, एकाग्रता और सही निर्णय की क्षमता भी आवश्यक है। भगवान गणेश का विशाल मस्तक हमें गहन चिंतन और ज्ञान का संदेश देता है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि की प्रेरणा देती हैं। उनके बड़े कान हमें सार्थक और उपयोगी बातों को सुनने की सीख देते हैं, जबकि उनकी सूंड परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का प्रतीक है। और उनका लंबोदर हमें जीवन की अच्छी बुरी

0: कटु मधुर परिस्थितियों को धैर्य पूर्वक पचाने की प्रेरणा देता है। महर्षि वेद व्यास के साथ महाभारत का लेखन भगवान गणेश के समर्पण और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। जब उनकी लेखनी टूट जाती है तब विज्ञान के कार्य में बाधा ना आए इसलिए अपना एक दांत ही लेखनी के रूप में अर्पित कर देते हैं। यही कारण है कि वे एक दंत कहलाते हैं। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश गणेश विसर्जन में छिपा है। 10 दिनों की तपस्या के बाद गणेश जी की पार्थिव प्रतिमा को सरस्वती नदी के जल में विसर्जित किया जाता है। मिट्टी का जल भी विलीन होना हमें याद दिलाता है कि जो प्रकृति से आया है उसे अंततः प्रकृति में ही लौटना है। इसलिए गणेश चतुर्थी केवल पूजा और उत्सव का पर्व नहीं बल्कि ज्ञान विवेक त्याग निष्ठा धैर्य और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद करने का अवसर भी है। आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम अपने भीतर के अहंकार और अज्ञान का विसर्जन करें और अपने जीवन में ज्ञान विवेक प्रेम और सकारात्मकता को स्थापित करें। मुझे पता है श्रोतागण कि अब आप बेसब्री से मुहावरे का इंतजार कर रहे हैं और ख़ास करके गुरु बिस्वा के मुहावरे पर आधारित रची गई लघु कथा को सुनने में भी आप धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जल्द लौटते हैं मुहावरे की ओर। इस बार के जो मुहावरे हैं बहुत ही सरल है और आप इसका उत्तर शायद जानते भी हों। पहला है कान देना, दूसरा है आंखों में धूल झोंकना। फिर से सुन लीजिए, कान देना और आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ आप खोजने की कोशिश कीजिएगा। अगली बार इसका अर्थ गुरु बिस्वा बताएंगे। अभी अब बारी है गुरु बिस्वा पिछली बार जो मुहावरे पूछे गए थे उसका अर्थ बताएंगे। पहला है श्री गणेश करना।
1: जी हाँ प्रोफेसर जी, उसका अर्थ है शुरुआत करना या काम आरंभ करना। यदि वाक्य में इसका प्रयोग करें तो इस प्रकार होगा, नया मकान बनाने के लिए रमेश ने आज भूमि पूजन करके श्री गणेश कर दिया है।
0: बहुत अच्छा। दूसरा है गोबर गणेश होना।
1: जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प। इसका अर्थ है एकदम मूर्ख बुद्धिहीन या सुस्त होना। जैसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान न देने के कारण वह लड़का बिल्कुल गोबर गणेश बन गया। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है, कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। रमेश पढ़ाई में बहुत लापरवाह था। शिक्षक जब भी कोई प्रश्न पूछते वह बिना सोचे चुपचाप बैठा रहता। मित्र उसे समझाते कि नियमित पढ़ाई करने से ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है, लेकिन वह उनकी बात अनसुनी कर देता। परीक्षा में जब वह कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह प्रतिदिन मन लगाकर पढ़ेगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने समझ लिया कि गोबर गणेश बने रहना कोई उपलब्धि नहीं, अचीवमेंट नहीं। गोबर से उठकर गणेश की तरह बुद्धिमान बनने में ही सफलता का असली रहस्य है।
0: अद्भुत कथा आपने सुनाई,
1: धन्यवाद
0: गुरु बिस्वा। तो प्रिय श्रोतागण, गुरु बिस्वा को आप बधाई और शुभकामनाएं भी भेजिए। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि गुरु बिस्वा प्रत्येक बार मुहावरे पर सुंदर सुंदर लघु कथा लेकर आते हैं, स्वयं रचते हैं और हमें उससे लाभान्वित भी करते हैं। आप भी उनसे यह सीख ले सकते हैं कि किस तरह हम मुहावरे और लोकोक्तियों के आधार पर छोटी छोटी कहानियाँ लिख सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं, आपस में साझा कर सकते हैं, जिससे एक हमारे बीच साहित्यिक गतिविधियों का माहौल बन सकता है।
1: जी अवश्य।
0: तो अब श्रोतागण, आपके लिए आमंत्रण संदेश भी है। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें अपने जीवन की उन बाधाओं को पहचानने का अवसर देता है जिन्हें हम ज्ञान विवेक धैर्य विश्वास और सकारात्मक सोच से दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में भी गणपति बप्पा से जुड़ी ऐसी कई कहानियाँ होंगी, अनकही कहानियाँ होंगी। शायद किसी कठिन परिस्थिति से निकलने की, किसी बाधा को पार करने की, किसी गुरु या माता पिता से मिली सीख की,

0: या फिर विश्वास और धैर्य के बल पर मिली सफलता की। तो क्यों ना इस गणेश चतुर्थी पर अपनी उस अनकही कहानी को हमारे साथ साझा करें। अपनी कहानी हमें भेजिए professorrajshekhar@gmail.com पर। आपकी भेजी हुई चुनिंदा कहानियां हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और भविष्य में उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी करेंगे। आइए अपनी कहानी के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में आशा, साहस और प्रेरणा का दीप जलाएं। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी अनकही कहानी हमारे साथ साझा करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण सूचनाओं व जानकारियों के लिए कोटिशः धन्यवाद। श्रोताओं, कहा गया है, शुभम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धिम मे देहि देवेश यशो देहि च सर्वदा। अर्थात, हे प्रभु, मेरे सभी कार्यों को सदैव शुभ और मंगलमय बनाइए। हे देवों के देव, मुझे बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कीजिए तथा मुझे सदैव यश, सम्मान और सफलता प्रदान कीजिए। श्रोताओं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि और उचित निर्णय आवश्यक है। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं, सही सोच, सही प्रयास और सही दिशा भी आवश्यक है। कहा भी गया है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल भी होता है और सफलता भी उसी को प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को विदा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसी ही शिक्षाप्रद कथा लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

में सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुर्खियां इस प्रकार है 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 9 ग्रेड 8 के 200 बच्चे सप्ताहों में एक सत्र में भाग लेंगे दो सप्ताहों के लिए निर्धारित है और कई वर्षों के बारे में वे सीखेंगे अनुशासन सेवा भार जिम्मेदारी आदि अगले 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस इसके संदर्भ में प्रांतीय प्रशासन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सभी से देश को साफ रखने की मांग मंत्रालयों और नियमबद्ध अधिकारियों को भी अपनी पहल करने के लिए आमंत्रित किया गया कार्रवाई का नाम ऑपरेशन जीरो डिपो आज पोर्ट लुइस में इससे संबंधित जानकारियां दी गई क्या मॉरिशस में अतिरिक्त रूप से क्लिनिकल ट्रायल किए जा सकते हैं पहले से ही एक कानूनी ढांचा है लेकिन सरकार अब से सरकारी अस्पतालों में और आगे बढ़ना चाहती है स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हॉश सैकड़ों देशों में मौजूद और उसने एक गैप एनालिसिस सरकार साकार किया ताकि ये पता लगा जा सके कि देश में किन चीज़ों की कमी गोपियों इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री के साथ की मुलाकात मुख्य रूप से मॉरिशस को एक वैश्विक कैपिटल का स्टेटस निर्धारित करने के प्रस्ताव पर बातचीत पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से संबंधित चर्चा और विदेश समाचारों में 16 सितंबर विश्व एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मना रहा है इस वर्ष का आयोजन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थायी विरासत और ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति में हुई प्रगति को रेखांकित करता है नमस्कार एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई है एक पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे दो सप्ताहों के एक सत्र में भाग लेंगे वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे जैसे कि अनुशासन सेवा भाग

जिम्मेदारी और किस तरह एक साथ जिया जाता है। इस पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी इस तरह के सत्र में भागने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए अब पर्यावरण और सफाई की बात करते हैं। अगले 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस है, जिसके संदर्भ में प्रांतीय प्रशासन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सभी से देश को साफ रखने की मांग की जा रही है। इसके अलावा मंत्रालयों और

0: सोमी की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: भूमि की सीमित उपलब्धता, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के आयात पर भारी निर्भरता, बढ़ता जल संकट और तटीय कटाव मॉरीशस की पर्यावरणीय लचीलापन का विश्लेषण इस पॉलिसी ब्रीफ में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र कंट्री टीम के अनुसार मॉरीशस की 11% आबादी मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित है। खेती योग्य भूमि की चुनौती से निपटने के लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026-2027 के बजट में कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। यदि मॉरीशस अपनी लगभग 75% उपभोग के लिए आयात पर निर्भर है तो रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25x35 पहल शुरू की है। इसके तहत प्रमुख कदमों में 2035 तक कृषि उत्पादन के लिए उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल दुगुना कर 25,000 एकड़ तक करना था और विदेशी श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाना शामिल है। जल के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की टीम का कहना है कि मॉरीशस जल संवेदनशीलता के मामले में सबसे अधिक और सबसे कम संवेदनशील देशों के बीच लगभग मध्य स्थिति में है। हालांकि पूर्वानुमानों के अनुसार देश को 2030 तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 2050 तक वार्षिक वर्षा में 13% की कमी होने का अनुमान है। इससे जल की उपलब्धता और कृषि उत्पादकता पर दबाव और बढ़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सभी के लिए पानी तक पहुंच कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके साथ ही जल सेवाओं के लिए बजट में 338.5% की वृद्धि की गई है। वनों की कटाई भी चिंता का एक प्रमुख विषय है। देश का केवल 23% हिस्सा अभी भी वनों से ढका हुआ है। यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम के आंकलन के अनुसार वन क्षेत्र में कमी हमें अत्यधिक गर्मी की लहरों से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सुरक्षा से वंचित करती है और जल संचयन और जल धारण क्षमता को भी कम करती है। मॉरीशस को तटीय कटाव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। देश की 17.6% तट रेखा पहले ही इससे प्रभावित हो चुकी है। अध्ययनों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में 2050 तक तट रेखा 5 से 25 मीटर तक पीछे हट सकती है। हालांकि यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम ने पहले से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है, फिर भी उसने जल के अधिक कुशल उपयोग के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर के विकास की सिफारिश की है। यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को मजबूत करने और जल उपयोग की दक्षता में सुधार करने की भी वकालत करती है। इसके अलावा स्थल और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत नियोजन एवं प्रबंधन को भी बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है।
2: बच्चे स्कूल न जाकर अन्य जगह जाते हैं, ये समस्याएं नौजवानों में पाई जा रही है। इससे निपटने के वास्ते कई कदम उठाए जा रहे हैं। सिल्वाना पारिमामन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: फ्लक में फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की इस शाखा में गुमशुदा मामलों की जांच की जाती है। इनमें 16 वर्षीय इस लड़की का मामला भी शामिल है। एक रात 7 बजे वो फ्लक स्थित अपने घर से क्यूपिप के लिए निकली थी। लापता मामलों में 75% मामलों में लड़कियां शामिल हैं। ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्कूलों में युवकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके अनुसार कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई बच्चा अपना पारिवारिक घर छोड़कर चला जाता है।
3: Majorité, c'est une fille qui est fuguée. Et la raison principale qui fait cette allée, c'est à cause de...
1: Sajid Bhanda qui dit qu'il y a ज्यादातर लड़कियों के लापता होने की खबर मिलती है और ज्यादातर कारण बॉयफ्रेंड का मामला होता है। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के यहां चली जाती हैं। इसके पश्चात जब ये लोग अपने घर वापस लौटती हैं, तब नाबालिग का शारीरिक संबंध में पड़ जाने का मामला खड़ा होता है। दूसरे कारण भी पाए जाते हैं, जैसे कि पारिवारिक तनाव, अभिभावकों का ज्यादा सख्त होना, बच्चों पर दबाव डालना। माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार और आचरण पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बच्चों का ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या शांत रहना आदि। ये सूचनाएं नियमित रूप से मीडिया में प्रसारित की जाती है। ऐसा ही एक मामला 17 वर्षीय लड़की का है जो पिछले 4 महीनों से लापता है। कई माता-पिता अब भी ये मानते हैं कि किसी के लापता होने या घर से भाग जाने की सूचना देने से पहले 24 घंटे इंतजार

0: उपचार करना जरूरी है। सर्जन भंडा केदू कहती है नाबालिग के मामलों में जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की जाती है, पर इसके साथ साथ अपनों के यहाँ जांच करने की भी सलाह दी जाती है जहाँ बच्चे अक्सर जाया करते हैं। हम लोग इन जगहों पर अपनी तलाशी शुरू करते हैं। अगर परिवार को इसकी जानकारी है कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लड़की के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। 8 सितंबर तक फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड ने लापता होने के 193 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 181 युवकों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, जबकि 12 अभी तक लापता हैं। 2025 में नाबालिगों के लापता होने के 199 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 9 नाबालिग अभी भी लापता हैं।
1: और सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के लिए सत्र में भाग लेंगे। वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे, अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और किस तरह एक साथ जिया जाता है। अनाबेल वुल्बिया की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
2: नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज सुबह से प्रशिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 16 से 28 नवंबर तक इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इस पहले संस्करण में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। देश के निर्माण के लिए एक ऐसा प्रोग्राम सहायक होगा जो नौजवानों को साथ ले आए ताकि वे सीखने के साथ साथ जिम्मेदारियों का अनुभव कर पाएं। संविधान या सरकारी ढांचों के बारे में जानने के अलावा वे देशभक्ति के बारे में भी सीख पाएंगे। ये कार्यक्रम 2 चरणों में है। पहले सप्ताह में देश के 4 क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियाँ और प्रशिक्षण होंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल कार्यक्रम होगा। हम नौजवानों को सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे वे नेक कार्य के लिए साथ आ सकते हैं और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं, हम ये सिखाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, टीम स्पिरिट और समुदाय के प्रति जुड़ाव विकसित करना है। हम चाहते हैं कि छात्र खुद सीख कर दूसरों को समझाने में सक्षम हो। रेक्टर को भी नाइस में सिखाए गए मूल्यों की याद दिलानी होगी। इस पायलट संस्करण में कई संस्थाएं शामिल हैं और निजी क्षेत्र की भी भागीदारी है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इसकी प्रगति और संचालन की समीक्षा की जा सके और इसे ज्यादा छात्रों के लिए आगे बढ़ाया जा सके।
1: चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। मॉरिशस में लगभग 100 ऐसे शिशुओं का जन्म होता है जिन्हें हृदय में कोई कुरूपता होती है। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के 2 स्पेशलिस्टों की एक टीम इन दिनों मॉरिशस में है और वे मिनी इन्वेजिव सर्जरीज कर रही हैं। इस टेक्निक की बदौलत कुछ मालफॉर्मेशन का इलाज बिना थोराक्स खोले किया जा सकता है, साथ ही अस्पताल में रहने की अवधि भी घटाई जा सकती है। वे ज़्यादा जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। अभिभावकों के लिए ये एक भारी राहत की बात है। पेश है ये विवरण।
2: 10 महीने के इस शिशु की सर्जरी मंगलवार को की गई। जब वो 21 दिन का था तो डॉक्टर को उसके दिल में छेद का पता चला। उसके माता पिता के लिए ये बहुत मुश्किल रहा। उसके दिल में 2 छेद थे। हमने इलाज जारी रखा और डॉक्टर ने बताया कि एक विदेशी टीम सर्जरी के लिए आएगी। डर तो लग रहा था लेकिन डॉक्टर ने ठीक से समझाया और हम आगे बढ़ पाए। 4 दिनों के अंतराल में कुल 25 मिनी इन्वेजिंग कार्डियक सर्जरीज की गई। दिल की धड़कन में अजीब आवाज थी, छोटी थी तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो बेहोश हो गई और परीक्षण करने पर दिल में

0: संकेत का पता चला, इलाज हो पाया है, ऑपरेशन सफल रहा। इनका संबंध मात्र बच्चों से नहीं, 39 साल की अनुष्का को उसकी बीमारी के बारे में बहुत बाद में पता चला। दो तीन साल पहले इसका पता चला, कल सर्जरी हुई और आज मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। दुनिया भर में हृदय संबंधी असामान्यताओं के मरीजों का मार्गदर्शन करने वाली बरतानी संगठन हीलिंग लिटिल हार्ट्स प्रोग्राम के तहत इन मरीजों का इलाज हुआ, जिसके जरिए स्पेशलिस्ट की टीमें सार्वजनिक अस्पतालों में स्वयं सेवा भाव से ऐसे ऑपरेशन करते हैं और अपनी विशेषज्ञता बांटते हैं। हमने करीब 4,000 सर्जरीज की हैं, कैथेटर के जरिए बच्चों की सर्जरी करते हैं। हम 2016 से मॉरिशस आ रहे हैं, ये हमारा 9वां या 10वां दौरा होगा। हर बार हम 25 से 30 ऑपरेशंस करवाते हैं, सभी इसी टेक्निक से। मिनी इन्वेजिव टेक्निक से सर्जरी की जाती है, जिसके तहत मरीज को काटना नहीं पड़ता है। इस टेक्निक से दर्द कम होता है, बच्चे जल्द ही ठीक हो जाते हैं। सामान्य सर्जरी में बच्चों को कई हफ्तों या एक महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है, लेकिन कैथेटर से सर्जरी कराने वाले बच्चे दूसरे ही दिन घर वापस जा सकते हैं, कुछ उसी दिन वापस जा सकते हैं। मॉरिशस का ये 10वां दौरा इस बार बुबा सेंट रोज़ेल के रोटरी क्लब के सहयोग से संभव हो पाया है।
1: यासिन धर्मामोद की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं, क्या हम मॉरिशस में अतिरिक्त रूप से क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं? पहले से ही एक कानूनी ढांचा है, लेकिन सरकार अब से सरकारी अस्पतालों में और आगे बढ़ना चाहती है। स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी गॉश सैकड़ों देशों में मौजूद है और उसने एक गैप एनालिसिस साकार किया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि देश में और किस चीज़ की कमी है। तो क्या हम क्लिनिकल अनुसंधान में नया चरण पार करने के लिए तैयार हैं? अंजुराम गुलाम की रिपोर्ट पर विवरण करना लालू।
2: किसी नई दवा, वैक्सीन, चिकित्सा उपकरण या उपचार से पहले उसकी जांच करना, यही उद्देश्य है क्लिनिकल ट्रायल्स का। मॉरिशस में 2011 से क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट के तहत ऐसा किया जाता है। अब अधिकारी इस व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं। 2026 में अपनाए गए क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट के सुधार का उद्देश्य क्लिनिकल रिसर्च की प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित करना, सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले परीक्षणों को बढ़ावा देना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसी संदर्भ में स्विट्जरलैंड की दवा और वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गॉश ने अपना गैप एनालिसिस रिपोर्ट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स प्रस्तुत किया। क्लिनिकल ट्रायल की बेहतर समझ के लिए गॉश मदद कर सकती हैं। एक योजना बनाई गई है ये दिखाने के लिए कि कैसे ढांचे कायम किए जाए, कौन सी जानकारी सूचित करें, ताकि मॉरिशस हॉस्पिटल अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को प्राप्त कर सके। क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर काम पहले ही शुरू हो चुका है। पॉम्पलेमोस के सचिव सागराम गुलाम हॉस्पिटल में हृदय रोग के 23 मरीज फिलहाल एक ऐसे परीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एक नई चिकित्सा उपकरण की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इस रिपोर्ट से जान सकेंगे कि क्या बेहतर करना है। प्रशिक्षण, लैबोरेटरी, फार्मेसी, मूल ढांचे और सुरक्षा को लेकर मकसद पब्लिक अस्पतालों में नए इलाज की बेहतर पहुंच है। लेकिन एक सवाल सबसे अहम है, मरीजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? डॉक्टर निशान नंदलाल ने कहा, प्रतिस्पर्धा का मतलब सुरक्षा में ढील नहीं। ये रिपोर्ट यह आश्वासन देती है कि जो भी कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल हो।
3: Confiance qui tout nous a fait que nous peut faire et d'après standard international nous pas avec quatre corners titulaires.
2: दक्षिण अफ्रीका में उदाहरण के लिए स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की जीवित रहने की दर करीब 40% है। वहीं अधिक विकसित स्वास्थ्य प्रणालियों वाले देश में ये दर 80% है। मॉरिशस में भी कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच नए क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत को सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। शमीमा पाटिल कहती हैं, मॉरिशस में साल में स्तन कैंसर के 700 नए मामले बहुत ज्यादा हैं, रोड्रिग्स में भी वृद्धि है, हम काफी पीछे हैं, इससे लोगों का जीवन

0: बेहतर होगा। करीब 6 महीने में क्लिनिकल ट्रायल्स का विस्तार मधुमेह से पीड़ित मरीजों तक भी किए जाने की उम्मीद है। आखिरकार इस शोध का मकसद सिर्फ एक नया उपचार खोजना नहीं बल्कि उन जिंदगियों को बचाने की कोशिश भी है जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है।
1: गोप्यू इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ भेंट की। मुख्य रूप से मॉरिशस को वैश्विक कैपिटल का एक स्टेटस निर्धारित करने के प्रस्ताव पर बात की गई, जैसे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से संबंधित। इसके अलावा मॉरिशस में हर 2 वर्ष युवा संगठन की एक बैठक लगाए जाने पर भी बातचीत चली। फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये और फ्रांस और थाईलैंड के नए राजदूत इकापल पुलपिपत ने आज स्टेट हाउस रेजी में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुर के साथ रस्मी मुलाकात की। फ्रांसीसी राजदूत समुद्री सुरक्षा पर आदान प्रदान मजबूत करना चाहते हैं। उधर थाईलैंड की तरफ से व्यवसाय, निवेश और कृषि एवं खाद्य सेक्टर में आदान प्रदान के विकास को बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया जा रहा है। इन दिनों 273,000 से अधिक मॉरिशनों एवं रोड्रिक्स वासियों को बेसिक पेंशन प्राप्त हो रही है। इसी सप्ताह प्रकाशित समाज सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में अगस्त महीने के अंत में लाभार्थियों से संबंधित जानकारियां दी गईं। इनमें से 5,300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 90 वर्ष की आयु से कम है और इनमें से 242 ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के हो गए हैं। इस बुलेटिन में उन लाभार्थियों के नाम भी शामिल जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स और कई सोशल अलाउंस से लाभ उठाती हैं। स्टेट एज पेंशन के अमल में लाए जाने से आंकड़े भी प्रभावित होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। 16 सितंबर को विश्व एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मना रहा है। इस वर्ष का आयोजन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थायी विरासत और ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति में हुई प्रगति को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनेप की नवीनतम वैज्ञानिक आंकलनों से पुष्टि होती है कि यदि वर्तमान नीतियां बनी रहती हैं तो अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत के 266 तक, आर्कटिक के ऊपर 2045 तक और शेष विश्व में 2040 तक 1980 के स्तर पर वापस आने की उम्मीद है। ये उपलब्धि वैश्विक सहयोग की शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। विवरण करुणा लालू।
0: विश्व ओजोन दिवस के मौके पर 16 सितंबर को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने अपनी ओजोन बुलेटिन जारी की। इस दिन 1987 में हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उपलब्धियों को याद किया जाता है जिसके तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सफलता मिली। इस वर्ष की थीम है ग्लोबल एक्शन फॉर ए कूलर प्लैनेट यानी कि ठंडी धरती के लिए वैश्विक कार्रवाई। प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन की 10वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करती है। 2016 में हुए किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के इस्तेमाल में चरणबद्ध कमी लाने का प्रावधान किया गया। HFC ऐसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जिनका इस्तेमाल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के विकल्प के तौर पर किया जाता है। इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की कई कूलिंग तकनीकों में होता है जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इंसुलेटिंग फोम और कुछ चिकित्सा तथा औद्योगिक उपकरणों में भी। पिछले 4 दशकों में वायुमंडलीय निगरानी से नियंत्रित ओजोन क्षयकारी पदार्थों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित उत्सर्जन भी सामने आए हैं। इनमें CFC 11, HFC 23 का उत्सर्जन शामिल है। इसीलिए वायुमंडलीय निगरानी अभी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी से राष्ट्रीय प्राधिकरणों को जरूरत के मुताबिक लक्षित नियामक कदम उठाने में मदद मिलती है।
1: अन्य विदेश समाचार। कोसोवो के पूर्व अध्यक्ष हाशिम ताची को युद्ध अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। इनमें हत्या, अत्याचार और कोसोवो युद्ध अपराध अदालत की ओर से गैर कानूनी रूप से हिरासत शामिल। 58 वर्षीय ताची को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 1990 में सर्बिया में इलाके के हिंसक हादसों के दौरान अल्बेनियन कोसोवो लिबरेशन आर्मी के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से किए गए जुर्मों के लिए उसे दोषी पाया गया।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने ईयू का पहला सदस्य बनने के कनाडा के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूरोपीय संसद को बताया कि वे कनाडा के लिए दरवाजा खोलने के बारे में काम करना चाहती हैं, जिससे कि कई अहम सेक्टरों को लेकर घनिष्ठ संबंध कायम किए जाने की बात शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नर ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे ईयू के साथ एक अद्वितीय संबंध कायम करना चाहते हैं। गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए, दर्जनों लापता हुए, इनमें बच्चे भी शामिल। मलबों तले से शव और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी है।

मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार है। मॉरिशस में ऊंची लहर उठने की चेतावनी जारी है, जो गुरुवार 17 सितंबर 2026 को दिन के 10 बजे तक लागू है। मस्कारिन्स के दक्षिण में काफ़ी ज़ोरदार एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंड हवा बह रही है और मौसम भी हवादार है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रह रहकर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश भी होती रहेगी। मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटो पर कुछ इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। ऊंचाई पर अगर कोई कार्य है तो इससे बचने की मांग की जाती है, साथ में सड़कों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र बहुत खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठेंगी, 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ये लहरें तटीय इलाकों तक भी और निचले इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं। इस तरह मच्छरों से, प्लेजर क्राफ्ट चलाने वालों से और लोगों से मांग की जाती है कि वे समुद्र में न जाएं और तटीय इलाकों में भी समुद्र तटों पर न जाएं। तापमान, सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 18 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 23 एवं 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्योदय सुबह 6:04 पर, जबकि सूर्यास्त शाम 6:04 पर। मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों लुडोविक और कुविला को। कुछ ही समय में शोक समाचार। तमिल टेंपल रोड क्लिमोसिया में, तमिल टेंपल रोड क्लिमोसिया में 46 साल की 46 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सुचिता मोती पैदाशी नाम गोपाल सिंह, जो मीनाक्षी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर तमिल टेंपल रोड क्लिमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोदोदूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एमिली स्ट्रीट सेंसिलिया में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चुरामन लोहर पैदाशी नाम दुखी, जो मैडम जयराम नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री अजय लोहर के घर एमिली स्ट्रीट सेंचिलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। जानकी स्ट्रीट होशनो में 42 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री धूसन रिडोई, जो जाकी नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके पिता श्री धर्मवीर रिदोई के घर जानकी स्ट्रीट होशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। एटलास रोड गुडलैंड्स में 72 साल के 72

यजोल की श्रीमती राजकुमारी बोंदा। श्रीमती राजकुमारी बोंदा पैदाशी नाम गोकुल, जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है काल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री दिनेश बोंदा के घर अटलास रोड गुडलाइन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगोश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 1 PM। शुक्र रुबिन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: नहीं सो शाम के सारे छ बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन और एम फ्री रेडियो के साथ और आप सुन रहे हैं इस समय नई सोच कार्यक्रम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभा रही हूँ। जी हाँ, ये कार्यक्रम 7 बजे तक आप एंजॉय कर पाएंगे और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, नई सोच आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और आज का जो पहला गाना है, दिल है तुम्हारा, फिल्म से लिया गया।

0: नहीं सो।
1: ये जिंदगी भी क्या खूब है, कभी हमें हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी कुछ पल यादों में बसा देती है, तो कभी नए ख्वाबों से मिलाती है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी कि हर पल को जी भर के जिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देती।

या दोस्तों हम चाहे जितना भी हो हम मुस्कुराते जाएंगे जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेगी और हम हर मोड़ पर खुद को संभालते जाएंगे कुछ दर्द दिल में रह जाएंगे कुछ यादें आंखों में लेकिन चेहरे की मुस्कान को हम कभी कम नहीं होने देंगे है ना और ऐसे तो कुछ लोग हैं दिन भर की भाग दौड़ काम का बोझ और चेहरे पर थोड़ी सी थकान अब वक्त है सब कुछ पीछे छोड़कर घर की तरफ लौटने का हम चाहे कितना भी हो हम मुस्कुराते जाएंगे और अपने आप को हम हौसला देंगे कि कल का दिन और बेहतर होगा चलिए श्रोताओं बढ़ते हैं आगे अगला गाना लता जी और अनितिन मुकेश की आवाज़ों में और इसी गीत के साथ नई सोच कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला और 7 बजे के बाद भूलेगा नहीं आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, जी हाँ 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम। और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, जी हाँ प्यार से हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं 9 बजे तक, और आप लोग साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जहां बातें सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं दिल से होती है, और कुछ एहसास ऐसा होता है कि हम कह नहीं पाते, कुछ यादें सिर्फ ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं, और कुछ आवाज़ें जो सीधा दिल तक पहुंच जाती है। तो आज अपने सारे गम, सारी थकान और सारी फिक्रें भूल कर हमारा साथ दीजिए। नंबर है 4028070 और मैसेजेस आप भेज सकती हैं ऑन 5250620। कुछ 80s और 90s के खूबसूरत पॉपुलर गाने आपके नाम हम करते हैं। नाजिया हसन की आवाज़ में आज का पहला गाना सुनते हैं, ये दिल आप लोगों के लिए।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: दिलों की आवाज की आवाज।
2: जय श्रोता, इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था नाजिया हसन की आवाज आपने सुना। जी हाँ, एक महान कलाकार जो इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम बात करेंगे उनके भाई ज़ोहेब हसन के बारे में। और ये नाम साउथ इन एशियन पॉप म्यूज़िक के उस दौर से जुड़ा है जब नाजिया और ज़ोहेब की जोड़ी ने म्यूज़िक की दुनिया एक नई पहचान बनाई। ज़ोहेब ने अपनी बहन नाजिया हसन के साथ मिलकर अपने म्यूज़िकल करियर की शुरुआत की। उनका पहला एल्बम डिस्को दीवानी 1981 में आया और इसने दोनों को पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और दूसरे साउथ इंडियन एशियन म्यूज़िक मार्केट में भी खास पहचान दिलाई। और आज भी ज़ोहेब की आवाज़ में एक अलग ही मिठास थी और उनका कारियर एक ऐसे म्यूजिकल एरा का हिस्सा रहा जिसने साउथ एशियन पॉप को एक नई डायरेक्शन दी। आज भी जब उनकी आवाज़ उनके गाने रेडियो पर बजते हैं तो लोग सिर्फ म्यूज़िक नहीं बल्कि एक खूबसूरत दौर की याद बनकर लौट आती है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही पॉपुलर गाना ज़ोहेब हसन की आवाज़ में।

0: RL3 Radio. Radio. दिलों की आवाज
1: दिलों की आवाज प्रोग्राम 7:20 हुए हैं दोस्तों और आप साथ दे रहे हैं धन्यवाद वाक्वा के रहने वाली सुदेवी जी जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम वाक्वा जी हां वाक्वा से बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं थैंक यू सो मच ना सिर्फ वाक्वा लेकिन चारों ओर मैसेजेस आते रहते हैं फोन कॉल्स आते रहते हैं और इसके लिए हम आपको कहेंगे थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए और यहाँ पर आप गाना मांग रही हैं कुशल फैमिली के लिए खासकर दीदी ललिता दीदी सुनीता शोभा देवी नाम आलेंगा के रहने वाले राम रतन परिवार के लिए थैंक यू सो मच और स्पेशली ये गाना विश्वासघात 1996 में रिलीज़ हुई फिल्म लता जी और कुमार सानू की आवाज़ों में ये गाना गिरीश हलोर के लिए जो साथ जुड़े हुए हैं

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:33 हुए हैं दोस्तों। कभी आपने किसी को इतना चाहा है कि उसके ये कहाँ के लिए आपने अपनी सारी उम्मीदें लगा दी हो, और जब उसने ना कहा तो आपने सोचा शायद एक दिन वो समझ जाएगा। फिर आपने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार एक बार फिर से जब

जवाब मिला ना। ऐसे वक्त में दिल के अंदर एक अजीब सी जंग चलती है। दिल कहता है एक बार और कोशिश कर लो, और जिंदगी कहती है अब खुद को भी एक मौका दो। सच तो ये है दोस्तों कि प्यार मांगा नहीं जा सकता, किसी के दिल में अपने लिए जगह जबरदस्ती नहीं बनाई जा सकती। आप किसी को अपनी मोहब्बत जबरदस्ती नहीं बना सकती। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना हम चलाने जा रहे हैं। ये वादा रहा फिल्म से लिया गया, किशोर दा और आशा जी की आवाज़ों में। और ये गाना जाता है खासकर रोहित जी के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और साथ में संगीता जी जो रहती हैं क्यूपिप। आपके नाम ये प्यारा सा गाना।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: चलिए दिलों की आवाज प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और यहां पर 1994 में एक बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना और वो है अलीशा चिनोई की आवाज में और इस गाने ने उनको और पॉपुलर बना दी थी और यहां पर मेड इन इंडिया चले ये गाना जाएगा अक्षय और रीना के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बासा रोड का ट्रबोन

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज। श्रोताओ, आज हम बात करेंगे आंखों की, जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। ये आंखें आईना, कभी खुशी में चमकती है, कभी हम में भर आती है, और कभी किसी अपने के इंतजार में चुपचाप रा

देखती रहती है। किसी आंखों में मोहब्बत नजर आ जाती है, किसी की आंखों में जुदाई का दर्द, और कभी-कभी आंखें वो आंसू भी छुपा लेती है जिन्हें दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता। न जाने क्यों जसबिंदर नरुला और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में ऑफिसर मूवी से लिया गया और ये गाना जाता है खासकर इन रानी जी के लिए जो हमें सुन रही है। मेबर्ग से साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको, और साथ में विवेक और विक्षय जो रहते हैं बोबा से साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। गाना जाता है आपके नाम।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: चलिए सुखविंदर सिंह की आवाज़ में सुनते हैं अगला गाना. फिल्म का नाम है जानशीन और ये गाना खास कर नाविद के लिए जो हमें सुन रहे हैं और वो ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं खास दोस्त के लिए. और इस खास दोस्त का नाम उन्होंने नहीं बताया है. कोई बात नहीं, जो भी है वो बहुत खास ही होगा.

Čili Down to the Memory Lane 80s के खूबसूरत गीत जहां सागर मूवी से लिया गया किशोर दा की आवाज में और ये गाना जाता है बडवग बिदेसी जी के लिए जो इस समय हमें सुन रही है साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद और हमारे सभी 80s लवर्स के लिए

आज बजकर 33 मिनट हुए हैं दोस्तों, चले बढ़ते हैं आगे। शहनशाह फिल्म से लिया गया लताजी और मोहम्मद अजीज की आवाजों में, और ये गाना जाएगा करण। अच्छा, फिल्म का नाम है करण। ये गाना हम बाद में चलाएंगे, अभी के लिए ये गाना हम आप लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं दान, श्वेता, रविश, प्रिशा, लव लव शाह और आप आडू फैमिली के लिए जो रहते हैं रोशनो।

0: लो ये कंबल लो बहुत सर्दी है
1: अरे लो ना कंबल से भी कोई जिद है
2: और तुम
1: अरे अपना क्या हम तो सिपाही हैं सिपाही कोई शक अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो अरे लो नहीं तो सर्दी में मर जाओगी
2: मर ही जाऊंगी ना मुझे रोने वाला कौन बैठा है
1: कल तक कोई नहीं था लेकिन अब है कोई शक
3: आज बजकर 53 मिनट हुए हैं दोस्तों इस गीत के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद इस सफ़र में आपने साथ दिया हम सफ़र बनकर हमेशा ऐसे ही साथ दीजिए प्यार बरसाते रहिए अभी के लिए उषा को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ रात्रि

0: MBC Radio Mauritius, or MBC Radio Manoranjan.
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: Continuous music. RM3.
3: Bhojpuri, Tadka. Bhojpuri, Tadka. भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
4: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
0: सब संगत जयो के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम भोजपुरी दर का प्रोग्राम प्रस्तुत बा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अभी से लेकर रात के 11 बजे ले आज है बुधवार की रात बुधवार 16 सितंबर साल 2026 शाम के जब दक्षिण की ओर से आवत सीमा में पानी पानी कली रहल और हवादार मौसम बरकरार बा ठंडा भी बढ़िया लगता था बस थोड़ा मंगता को भोजपुरी गीत सुनने के The number of Maya Kazo de Vizo with Sank, Kazo de Vizo with Sank, 4028085. Our Chera Sudukre Leja, Tamakada program Kesat, Mukesh Chediki, our Git Kesat. Namaste.

0: Namaste, namaste, namaste, namaste, pakoste, namaste, pakoste. नमस्ते नमस्ते हो सब भाई बहनों के सब श्रोतालों के सब संगीत प्रेमियों के नमस्ते. रात के 9 बजे के साथ में थोड़ा बुरा जला संगत यारों की ढेर मना रिश्ता बाप इस धरती पर सबसे प्यारा रिश्ता है दोस्ती के रिश्ता. जैसे कि हमने के तुलों के दोस्ती के रिश्ता बा और हमने के तुलों के रिश्ता अभी से नहीं बा जब एमबीसी फोकस साइड कुपी में रहा तब से आज से हमने के तुलों के दोस्ती बा. दोस्ती खूब निभाईला उतना बरिस से वैन साइकों से 25 बरिस से तुलों हमने के साथ दिया था रेडियो पर एमबीसी रेडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद. और बेशक जब एमबीसी फॉर साइड में रहा तो वहाँ पर रहा वन वर्ल्ड एफएम, ताल एफएम, राजो मोगिस, रेडियो मोशिस और कूल एफएम. थोड़ा याद बना वन वर्ल्ड एफएम पर हर शाम के फजर के 5 से 9 बजे हम तो के साथ देव थे वन वर्ल्ड एफएम पर. याद बाकी नहीं आए है. और अभी अगला गीत चली आई लव यू. बाप रे बाप के बोला था आई लव यू हो सुनिता नन को. और देख अब सर कौन संगत अभी लाइन पे बा हमने के इंतजार करा था. वाह भाई विजय बेनी पर्सन कैसे भैया. और ये भैया हमने के इंतजार कर लगभग कैसे बच्चे आप सर. हेलो
1: हेलो नमस्ते भाई जी.
0: हाँ भाई विजय कैसे बस समाचार
1: कैसे भाई जी. अच्छा हुआ ना.
0: हाँ हो हाई के जी ठंडा थर थरी कप कपी लगा था
1: ठंडा कर रहा था हाई जा पड़ी तब सामुनी में बहुत ही ठंडा बा भाई.
0: रतवा के जस्सी ठंडा करे रहा ना.
1: हाँ रतवा के जस्सी अभी तनी सन पानी बरस गलवाने हाई जा पड़ी.
0: आप हवा हवा हो का
1: जस्सी ठंडा कर रहा था.
0: सुनते हैं देने देने फ्रेशियर है बस की सुनते अभी सुख शांति से आप मूवी गए थे गर्म करें. क्लाइमेटिक हुआ था अभी बढ़िया गर्म करिए जिसे मजबूत ठंडा का लगभग गर्म वो बढ़िया करी. और बोला था भाई विजय कौन गीत सुन रहा
1: हाय सुना ना सुना
0: नो यान
1: के गीत मांगा था.
0: हाँ?
1: नाटक बा सिनेमा बा
0: के का संगे जाए बा नाटक बा अता ने नाटक बा के का
1: खातिर ए सब बेनी प्रसाद परिवार. हाँ? अभी हमर जो सामुने रहेला गणेश जगनारायण. हाँ? अभी हमर खास जो शास्त्री बोनो माली मोहतावा से
0: ए हे ई तो हर बेस्ट फ्रेंड और जिगरी तो हमेशा तो हर बात करेला.
1: हां तो वो तो बेस्ट फ्रेंड है.
0: कितना कितना कितना बड़ी से कमा दो सा हो
1: जानेला. हम हमरा से संसाय हो गल बाती त हम गेत गेत हो गैली.
0: हाँ,
1: हम सिक्योरिटी काम करे चली.
0: हाँ,
1: सेट बनाने 7 बरिस काम करली सेटोबे में.
0: ओके ओके
1: त उ 7 बरिस शान फजी लोग के संगे बाजार ले करे चली
0: एटा. हां
1: त हमनी जानेला एगो परिवार से जस्सी है
0: जस्सी है जन दोस्ती के

0: अच्छा परिवार से जज कब कब परिवार ने तो काम आगा तो हर
1: जस्ट मजे संगत्या बहुत ही संगत्या
0: बोले हम तुम दोस्त
1: उन्हें सबके टेलीफोने कर दिला वह टेलीफोने कर दिला हमरा
0: अच्छा बा अच्छा बा अच्छा बा
1: हाल चाल के को बड़ी सूझ के दिन को मजे हमेशा अब रोज सामुनी में आवेला
0: संगे जब भेटा रहता संगे एक दो गुड़की मारे रहता ना
1: नहीं
0: था
1: जाने ला लेता
0: नहीं मिलेला हाँ काम से जाने ला उस
1: ओफिया वान ना हाँ हमने देखा वो मौत आवा रहेला हम सामुनी ता ये कुमाजे एक दिन ओगाने दे वो मौत कुमाजे एको शादी बिया ओकर यहाँ रही तब कुमाजे
0: हाँ
1: हाँ तब सा जी कुमाजे ऐसे जाने ला ऐसे वो काम करेला ता बोल बा चले गो गुड़की दे ता वो कोजे कर दे
0: डिफिसिल बात डिफिसिल बात
1: डिफिसिल बात है ऐसे बैठाइला सी
0: मजे तो के लामी छे हमेशा इसने बढ़ती रही और अजन प्यार अपनापन बा एक दू को भाई लिखा रहा तो सर भगवान से दिल की दोस्ती हमेशा बराबर रही
1: हां वो उधर ल संगत में एको बिहार संगत है
0: एको बेस्ट फ्रेंड है
1: एको बेस्ट फ्रेंड आज मजे उ तो सुनिया
0: तब भाई विजय बहुत-बहुत धन्यवाद बात कर ला अगला गीत और कहते नाटक व सिनेमा व आली बंकवाज सामुनी में बड़ी ठंडा कर था मौका में तो बड़ी ठंडा भी सुनाल बा मीठी बोलता से जी ठंडा करी और सकेला सुख सामने देख बड़ी गरम कर दे शुरू करे के ता हाय अगला गीत नाटक बा सिनेमा बा के कर संगे जाइब साइलेंट केयर से गीत चाहता कर मारीता अगर मौसी रेणुका के नाम मौतबारे रंस आशा जानू कोते से अगर नेफ्यू शुभम मामा कुमारी देदी आरती जीजाजी और चीजों पर खतेर रतन निहाल गोंबे से पापा विजय पत्नी करुणा चाची ललिता कुशल त्रियोली सेवन बोबा से भाई हरीश पॉलो जैसे काला छोटी देवेन नदीवाला वैंकूवर कनाडा सेवन और स्वीट एंड लवली रेहाना हसन अली के नाम आप हेलन फेनिक्स तो चलो ये सब श्रोता लोग के प्रसिद्ध पर गेट नब जा नाटक बस सिनेमा बा

बोले तो छोकरा छोकरी में कौन जस्ती मालिन या मालिन है वंसा मॉडिशस में एक उस सर्वे हो रहा है फेकवा साथी चिक बोला कि छोकरी लोग छोकरा से जस्ते मालिन रहे रंसा हर एक क्षेत्र में छोकरी जो है आगे बाव चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो कोनो भी डोमेन में हमने कि छोकरी छोकरा से जस्ती मालिन है वंसा वाओ क्या बात है यार आगे के ज़माना में जब छोकरा लेकर आता तो ढेर कोई बोले साप वो फोमियलो सा छोकरी दे जमलो आजकल दोनों फोमियलो है भैया वो चाहे छोकरा लेकर थोड़ा भगवान दे रख भाई छोकरी लेकर ये दोनों फोमियलो है दे जमलो ना ही बोलिए यार के दिल दुखा जाए तो छोकरा छोकरी अगर पढ़ ही लिखी बड़ा आदमी बनियन और देखिए ऐसे छोकरी लोग दस्ती नहीं बन गए थे आने रखा अपने प्रीमियर प्रीमियर सेकंडरी देश में भी छोकरी लोग दस्ती नहीं बन से छोकरा लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं सर तो छोकरा लोग हमनियों की इज्जत भी हमने की इज्जत गिराई है ना छोकरा लोग भी पढ़िया लिखिया और आगे बढ़िया और शिक्षा जो है लावीनिया के वो पासपो है सबको जब पढ़ा निकल रहे के समाज में तब सब फोगे करे और आगे बढ़े अगला गीत बरसेला और गीत गेले वन राम तोहर सीता देवी जहाँ बहुत ही प्यारा संगीत है और गीत हमने चावा चलावत इसे सब श्रोताओं के नाम ज्ञान और चित्रा विश्राम मोदालबिया से कमला दिनू मोहताबा से और चीजों फुआ रोहित खातिर और ये गीत चली हरिदाल दिनू और सब दिनू परिवार राजमन्ना लोंग चिबुक राजा स्टीव प्रवीण भैरव संजू संजीव दिनू श्याम मंगल सुदेश जसवा और महाराज कुमारी और है गीत चली साइरेन के और बेस्ट फ्रेंड वीरानंद दीनदयाल के नाम चले एक साथ सुने गीत बरसेला

ऐसे में दिखबत सब कोई बुलेला तो संगतिया वंस पर जब बेज आवेला जब दुख आवेला तब तू असियत में जन्म की तो हर संगतिया के बा और दुख के समय में जन संगतिया काम आवेला वही सच्चा संगतिया कर जाला अंग्रेजी में कहावत बा ना ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड जरूरी नहीं बाकी तोहर तोरा चाहे ढेर मना संगतिया खाली एक दुगो संगतिया रही और उस संगतिया सेंसे रही होने रही तो बस है ये काफी बा हो कि नहीं कमागत कमागो नहीं बनिया अगर कोई सी दोस्ती कर ले तो हर हाल में अपन दोस्ती निभाई एगो दोस्त ना एगो भाई लिखा रहेला एगो परिवार के सदस्य लिखा रहेला जौन हमने के सुख दुख में साथ देवेला और जब तू दुख में रह तो आके एगो सहारा दे थोड़ा एपुले करी ई कहाला सच्चा दोस्ती अगला गीत सुबह रामचंद्र फकीर गेरेवन कहाँ छोड़ के अगी तो चलाओ मिसेस बंधन मिसेस चंपा रघुनंदन मिसेस ओकल मिसेस रघुबा और मिसेस झमन के नाम साथ में गीत चली स्विट्जरलैंड के रंभा और तीन को बेटी घरोला और सब जानकी परिवार जो गुडलैंड रहे रंसा और है गीत चली रवि बंगारू और सब परिवार के नाम कहाँ छोड़ के अब कहाँ छोड़ के कि कहाँ जाता चल एक साथ सुना जितना कोई उनके साथ जुड़ल बा रेडियो सुना था वह तय गीत थोड़ो नाम खासम खास

0: कहां छोड़ के जाते हो कहूं नहीं जा बस सभी के साथ देव रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अभी चाची ललिता हम के साथ देव चाची ललिता नमस्ते
1: नमस्ते बेटा कैसे हो
0: हम बिल्कुल ठीक हैं तू कैसे हो चाची
1: कुशल मंगल बेटा
0: आ पानी बरसा था तुझे में
1: हाँ हाँ बरसा
0: चाची हम तुमसे कोई बात पूछ
1: बोला
0: ठंडा करे तो हमें आम हो आता था ई कैसे बाजार में देखा था
1: आम फरते रहे लाने आले लाने
0: बाजार में देखा था बहु बाप रे बाप हो बड़ा बड़ा थी आम बिचाता तो और बगैर आम बाह भी हुआ था
1: बाटे आम तसल म अब सब सूरे मुंह डाल दे रखा
0: हाँ यू चाची हम बोली आई थी तो हर लगे तो नौ चार कुछ अच्छा डाल देती
1: है आई
0: रखे मगर एक साक है
1: अच्छा
0: हाँ हाँ और कैसे समाचार बोला था
1: सब कुशल मंगल बाबा
0: अरे कौन गीत सुन चाची बोला
1: आज बेटा डालिया विनोद शिवदत्त के भोजपुरी भाषा
0: भोजपुरी भाषा विनोद शिवदत्त हाँ।
1: दादी हमार बहन सुदेवी ज्ञानी हमार छोटी दीदी दादी हाँ। प्रभावती हरीश
0: हाँ।
1: भैया आत्माराम भैया
0: हाँ चाचा आत्माराम कैसे बात बोले तो कर नुबे
1: तनी अच्छा हवन
0: हाँ घर वाले देखे
1: नहीं नहीं
0: देता नहीं मिला
1: नुवेलवा मिल जाला
0: हाँ हाँ हाँ राजू से हाँ और बोला और क्या कर खाते
1: आर सुकलाल मौसी
0: हाँ
1: आप तो हर खाते बेटा
0: बहुत बहुत धन्यवाद अभी कितना अभी रात के 11 बजे सुनिया है
1: हाँ हाँ
0: अभी गमटा होते रही
1: हाँ
0: हाँ बहुत धन्यवाद चाची
1: अच्छा बेटा शुभ रात्रि
0: चाची एम की चाची एम की प्यारे सिंह चाची एम की जुलार के चाची लाइता कुशल हवन त्रियोले से तो त्रियोले में जितना हमने सुना था सबको एक प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते कलकत्या परिवार जीराखन परिवार महाराणा प्रताप ने त्रियोले त्रिभुज के सब हरकू परिवार के भी सलामबा और चाची मंगलक गीत विनोद शिवदत्त के बाप दादा लोग के बोली तो चला बाप दादा लोग के बोली हम यो सुनब जा तोरा सुनाब जा के उनकी बाप दादा का बोले रलन ए

इरहल बाप दादा लोग के बोली और अब हमनी तोरा को ब्यूटी टिप्स देव सर तू चाहे पुरुष हो या स्त्री हो और चाहत हो कि तो चेहरा ग्लो करी और में कुछ चमक आए और चेहरा में अगर बूतों बा या सांवर बा चेहरा तो सब के सफा करी कैसे देखो कुकुम लिया कुकुम जाने ना ककम जो नॉर्मल खाया सर ओके छिल के और दाग निकाल के गोल गोल कचिया होंडेल फिर अपन चेहरा में ओके दलिया एगो 15-20 मिनट ले और फिर होंडेलवा के निकाल के ठंडा पानी से धोया देखब तोहर चेहरा ग्लो करी ओकर में कुछ चमक चलाए तो कोको में औसन तत्व है कि तोहर लापो के खेती करे ढेर कोई हम दिख रहे हैं सर टीवी पर भी देख रहे सर और मीडिया पर भी सोशल मीडिया पर कि कैसे जो कोकुम जो हमने खाए ला सर ओके गोल गोल काट के अपन चेहरा में दल बेशक चाहते इंतजार करके रोज के उसे करिए और देखभा एक सप्ताह में तोहर चेहरा एकदम चमकी लगी ग्लो करी ओए होए अब सुन अब अगला गीत मधु नीरज गुप मधु के गावल गीत है आधा रात और है गीत हमने चलावत है इस विशाल उजायब के नाम आप ग्रोव विशाल मंडा बिटली में हवन कर पत्नी और बेटी खातिर विशाल विशेषर आप वासे कर पत्नी कर बेटा शालिनी हिरू कर घरोला कर दुगो बेटी और भाई कृष्णा खातिर प्रतिमा तीना दीना बानू रोशनी अपाया सजू गोसाई विगापेन खातिर गीत और MGI कॉलेज जुर्मुका में स्थित वहाँ के सब स्टूडेंट और अध्यापक दोस्तों के नाम एंड विदाउट फॉरगेटिंग University of Mauritius के Faculty of Social Studies and Humanities के अमर सब जिले व प्रोफेसर लेक्चरर लोग के नाम अगला गीत आधा रात अब आधा रात की कौन सी होला चला एक साथ सुनब जा नीरज गुप मधु की आवाज़ में

0: और जगह तू सपना में दिखेला करूं तो और सामने चला है तो कितना अच्छा बात है यहां कि नहीं रात की नौबत के 50 मिनट तोरे को संगत वाला लाइन पे कॉल से मिलब जा हेलो जी नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: के हवा जा
1: श्रीमती
0: सुयाक से कैसे समाचार बा माता जी वहां पानी बरसता
1: हाँ,
0: का
1: हां सब ठीक बा
0: सुनाता पानी बरसता वहां
1: हां पानी नहीं बरसता
0: ठंडा करता
1: पूजा पाठ सब अच्छा से होगा
0: हां सब गणेश चतुर्थी के पूजा हो ना निमन से
1: हां
0: अब गोविंदन के पूजा होई वेंकटेश्वरा के पूजा होई
1: अब एगो गीत डाल दिया हमार खातिर
0: कौन गीत
1: चिराई करे चुक चुक महलिया में चोर
0: बा दस गाद हम खाते
1: ना गाय के ना या वाला
0: थोड़ा सुन चाची गाद ना
1: अरे गाद दिला चिराई करे चुक चुक महलिया में चोर बा फुलिया समार देवरवा बोले चोर बा फुलिया समार देवरवा बोले चोर बा देवरवा बोले चोर बा देवरवा बोले चोर बा फुलिया समार देवरवा बोले चोर बा चोर बा चोर बा
0: ब्रावो ब्रावो चाची बहुत बहुत बधाई देखे जोरी से गा दिला
1: हां ये गीत डाल दिया सब परिवार लोग खातिर
0: ओके
1: चंद्रमुनी परिवार मोहिश परिवार खातिर और आपके लिए आपके सब टीम के लिए डाल दिया
0: बहुत बहुत धन्यवाद और गीत चली तुत स्वीट ओके आल नमस्ते और एक जो चिराई बोले चुकू चुकू सुनता है गीत चली

मिशन क्रॉस रोड लाल माटी के रविराज सिन्हा बिचुक की ओर से ओकर पत्नी स्वयं प्रभा और बेटा प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार के नाम अमृता डुंगूर हवन लाल माटी से ओकर बेटा अभिषेक और सब डुंगूर परिवार के नाम और जितना कोई विराट करने की सुना था सबको एक बोला था ऐजा अगर काम करते हुआ नाइट शिफ्ट में लगल हुआ हमने देखा था बंकुआस ठंडा में काम करके आसान नहीं बाए जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स बा पुलिस अफसर बा फायर सर्विसेज में काम करने समितियों में कॉल सेंटर में जहाँ कहीं भी तो काम करते हुआ बंकुआज चला है गीता सबको के नाम जन सुना था MBC रेडियो चिड़ैया बोले चुकू चुकू अभी रात के वक्त चिड़ैया कहाँ बा खोजते चिड़ैया मिल जाते पकड़ के रखते अभी आओ प्ले जाए कहीं कौन कहते चिड़ैया बा रात के चुक चुक चुक चुक चुक चुक करता सुनता ननको गावर गीत का जगह देवी जगह भी चाक सब बजे टेलीफोन करे हमने के लाइव टिकटॉक चली रात के 10 बजे से 11 बजे तक लाइव टिकटॉक ऑन रेडियो मॉरिशस चुक

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: On the hour, every hour, Radio Marches.
0: भोजपुरी तड़का
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो
3: रात के 10 बजे था और तू सुनता हमने के रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर और हमने के टिकटॉक पेज अभी खोला था ऐसा रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आज प्रताप सिंह सितालू के साथ रात के 11 बजे रे अगला गीत नुमा ये कृष्णानंद से गीत वा गए वन और है गीत हमने चावत ऐसा सब संगत यारों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा और आप हवन स्मिता कहोपन नमस्ते मंती चितामु निर्मला स्वरूप शीला दामा मुतु जिया संध्या रोशन देवी राजेश उजिहारी नाजिम ब्लैक ब्यूटी जॉग बसने मनीलाल जुमंगू है गीतरो नाम त्रिश एडोस है गीतर खाते प्रिंसाकी जोशनी अक्षय टोका बॉय जहीना नजीला लवना देवी रकीबाई इस्ता विश्वनाथ मीरा सावक बिपिन बी सीना देवजी प्रिया बाचू है गीतरो नाम सुरेखा सुबाला इब्राहिम एसके यश रोशन तेलर दया लवना की ओर से गीत चली उकर लव रोलान खातिर जो उनकी नया में काम करे था ये गीत चावत बिपिन बी खातिर बहुत बहुत प्यार से माला मिदुन घर गीत चली मिदुन की ओर से सब संगत यारों के नाम और बुला तो उनकी भी खाना तैयार करता और हमने की भोजपुरी गीत के मजा ले हुआ था तब बिपिन भी है गीत तो हर नाम सेवानी नर्जन आशा पमा सेवानी नर्जन धोआ है गीत तो हरो नाम माला जी गीत तो हर कहते अलीशा है गीत तो हरो नाम इस्माइल सुबुआ वो भी हमने साथ देवत हवन तो चले एक साथ सुने है गीत तो हा ड्रागोस्टा नुमा नुमा ये एल्बम है जलसा बॉलीवुड गीत वागे लेवन कृषि और नांसी

कब कब होला कि बात बात में कोई तो हर दिल दुखा दे रहा और तू उदास हो जा रहा तो मूड गाते हो जा रहा तू फिक्र नहीं कर जा गुस्सा में सके रहा कब कब कोई थोड़ा कोनो बात बोल दे तो दिल में नहीं रखिया और बात की गंती नहीं लिया तू जाने ना तू सही हो फिर काहे चिंता करेगा अरे भाई दिल तोड़े रहा ढेर बार दुनिया में पर दिल जोड़े रहा कम थी बा हाँ कि नहीं और हमने तो हमेशा दिल जोड़ रहा सर रिश्ता अगर कोनो प्रॉब्लम है तो रिश्ता के हमने अच्छी तरह से निभाई रहा सर मार छोंका भाई नमस्ते सुनी तंग के भूख लगा था हम जाए कौन से खा के आई तब ले सुनाई की तो राजकमल चिंतामणि गैरवन कमल तरंगिनी टू एल्बम से मार छोंका और एक गीत चनी गीता के उसे रोहन सुरजन के नाम रहरन रिविया जुरों पर सनशाइन के उसे कपति आशीष और कल्याणी शाम एक गीत हरो नाम चलावते इसे मिस्टर बूबा एक गीत हरो खतेर फिर माला जीवन और मिमी मिमी भी उनके साथ जुड़ल हवन और उनकी सुनते वन और दिखते वन रेडियो मॉशस के टिकटॉक पेज पर सुनब जा मार छोंका भाई मार छोंका में कौन कौन जबीज बा चल एक साथ सुनब जा

And John March on Gago Puranya Pakwana, this is Kitsi, Dalpita, Dud Piti, Ace Puranya Pakwana. रात के 10 बज के 14 मिनट हुआ था और टू सुना तो एमबीसी रेडियो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस और भी रात के 11 बजे हमने के दलों के साथ रही आई जो मन में भय है जो डर है एक चाह निकाल फेंके के अगर मन में डर रही भय रही तो कोनो चीज भी नहीं सब करी कोनो काम भी नहीं सब करे अगर मन में डर रही सोच आयु हम जैसे कमा गई से कि नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचे के है जो डर है वो फोबी है एक चाह निकाल दे के जब मन में से डर निकाल दे भय निकाल दे तू सब जिंदगी में आगे बढ़े पर जब ले भय तोर संग रही डर तोर संग रही तब कुछ नहीं सब करे और समझदार के इशारा काफी बा और अगला गाना चंद्रदेव जी बोधन गैले वन करक बोली ना बोलिया मीठा बोली बोलिया सच्चे कच्चा मीठा बोली बोले के और एक चार दिन से फीनिक की ओर से कर घर वाला और कर सब परिवार के नाम फिर विद्या है गीत और घर वाला और तो दुगो बेटा के नाम और है गीत डॉक्टर पूनम के लिए जो उनके साथ देवतवन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर है गीत खासम खास तोरो खातिर करक बोली ना बोली

बड़ी जैसा कि माँ बाप के घर में तू राजा हुआ माँ बाप थोड़ा सब चीज तोहर हाथ में देवेरा सब कुछ चुरा करके देवेरा कोई चिंता नहीं कोई टेंशन नहीं माँ बाप के घर में हर सुख सुविधा मिलेगा कर ले मजा भैया माँ बाप के राज में काजी ने ऐसा राज मिली फिर से कि नहीं हाँ और माँ बाप जो ना बड़ी दुरार से पर निकालो के रखे लन सा है आगे लिखा नहीं कि बार बार पर निकालो के ठप्पर पर मारे के ये सब नहीं बा आजकल माँ बाप अपन निका के बड़ी दुरार से प्यार से पूछे लन सा बुरा जमाना है तो सच है बुरा जमाना बा आजकल और है कि तो हमने चाहो सब रेजो मनोरंजन के संग चालो के नाम और खासम खास है गीत चली विद्या की ओर से कर बहिन और जीजा जी खाते और है गीत चलावते विनोद की ओर से कर भाई और भौजी खाते और है गीत चली वीरेंद्र की ओर से रवीना के नाम है गीत बहुत बहुत प्यार के साथ पूरा जमाना

एक से एक बढ़ते दिन भोजपुरी गीत तो हर पसंदीदा कार्यक्रम में भोजपुरी तर का और ही चलता अभी रात के 11 बजे रही और 10 मिनट में प्रोग्राम समाप्त हो जाए और सब कोई के जरा अपन जिंदगी अपन तरीका से जिए के और कोई के दुआ नहीं या तो के जज करे के तू जाने रहा तो अपन जिंदगी कैसे जिया था वो हो कि नहीं देखा थे वही रह सर की जिंदगी त्योहार है और कोई के हक नहीं बात तो हर संग को ना लोट डाली की तो अपन जिंदगी जिया जी भर के और प्यार से जिया जिंदगी चार दिन के भैया कोई के जिंदगी में दखल नहीं कर दिया ये जिंदगी त्योहार है और ऐसे में चला सुनम जाएगी तो सुबह रामचंद फकीर के अवर गीत दुल्हन के दादी है कि तो चलावते राकेश रामचंद की ओर से कर पत्नी और दुगो बेटा सब रामचंद परिवार के लिए प्रेम मायों से फिर अमर साथ देवत हो नमर है गीत तो हर पत्नी तो हर लेकर लुखा देर और है गीत हमें चलावते प्रतिभा की ओर से कर बहन ज्ञानती खतेर और को मॉडल के सब भैरव परिवार के नाम रिव्या जी पोसेवन उदय धनी राम और पत्नी बेटा पतो बेटी जामाद फिर भाई अभिलक हवन अभिलक सिंगिंग ग्रुप गीत और खतेर साथ में प्रीतम राज जमीला है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ तो चले के साथ सुनम जाएगी तो सुबह फकीर रामचंद गैलेवन सुबह रामचंद फकीर गैलेवन दुल्हन के दादी अब दुल्हन की दादी क्या बोलता चले के साथ सुने

हाय रे हमार भौजी सुरन रंजन के गावा है गीतवा के संगे भोजपुरी तरह का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता रात के 9 बजे से अभी के साथ दिला जाए हमके रेडियो पर सुनना टिकटॉक पर देखना बहुत बहुत धन्यवाद और रात के 11 बजे सुन बजा गिनीचा से अगला कार्यक्रम सुनहरे पर रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने की तौर के मुलाकात हुई सामने के फजर के 6 बजे से 9 बजे MBC रेडियो मॉरिशस पर 819 किलोहर्ट्ज़ पर तब तक हमने की इजाजत अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि बाय बाय

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार जी, और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल। तो आइए लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बसा लिए जाते थे। अगले कुछ घंटों तक साथ रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में।
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है

0: कभी तो हंसाए।
1: हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक याद है। दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वो अमर बॉलीवुड गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं। तो चलिए मिलकर यादों के इस सफर का आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं।

कर कीजिए ये उन दिनों को वाकई में वो दौर अलग था वो गीत अलग थे और उन गीतों की बात ही कुछ और थी दोस्त और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आज भी सजेगी यादों की

बॉलीवुड के सुनहरे दौर के लाजवाब गीत, दिल को छू लेने वाली आवाजें और यादों से भरा सफर। बिल्कुल जी, ये सब कुछ लेकर हाजिर है सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और अगला गाना हम उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो शायद इस वक्त काम पे हैं। एंड इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ, आपको हम विश करना चाहेंगे बो कोहाज माय डियर। तो चलिए, ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर पुरानी फिल्मों के गीत पुरानी यादें और वही पुराना एहसास चलिए कुछ पल के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं दोस्त और अगला गाना हम ऐसे पेश करना चाहेंगे जो हम चाहते हैं कि आप आराम से बैठे आंखें बंद करके अपने इन खूबसूरत यादों में खो जाइए उनको याद कीजिए होंठों पर आम प्रेटी मच्छों की छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट जरूर आएगी तो ये रहा अगला गाना खासकर आपके लिए

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय. आपको विश करना चाहेंगे टू हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम अहेड, लेकिन बस यूं ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल. फिर से लौट आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस

0: NBC Radio, हर पल आपके साथ।
1: Radio Mauritius,
0: 800 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
0: Radio Mauritius,

0: एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: माय दिस इज रेडियो वॉइसेस।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: किम चुमरिशिया।

से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: इस पे आए।
1: MBC Radio 24 hours a day.
2: My, this is Radio Marches.
3: निहाओ
4: वणक्कम
5: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस

0: MBC Radio, वजह मुस्कुराने की।
1: My, this is Radio Marches.
2: निहाओ,
3: Assalamualaikum.
4: किमचू मरिशियस।
5: नमस्कार।
6: श्रोतृंदर की हृदयपूर्वक नमस्कारम।
7: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम।
8: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: इसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: माय दिस इज रेडियो मॉरिशस।
2: न्यू हाउ

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: माय दिस इज रेडियो वॉइसेस।
2: निं हाओ अस्सलाम वालेकुम
3: मॉरिशियस
4: नमस्कार
5: श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम
6: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்
7: रेडियो मॉरिशियस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: एमबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: दोस्तों मैंने कविता लिखनी छोड़ दी थी, लेकिन कुछ दिन हुए तो ऐसे लगा जैसे सोए हुए जज्बात जाग उठे, प्यार की उमंग मचलने लगी है।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC Radio.
1: This is Radio Mauritius.
2: नमस्कार श्रोतृंदी हृदयपूर्वक नमस्कार
3: अवरुम वाकम
4: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग।
1: This is Radio Voices.
2: नमस्कार
3: श्रोतृंदी हृदयपूर्वक नमस्कार
4: अवरुम वाकम
2: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।

0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ 819 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस।
2: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब।